रूपमा राठौर, सोनू निगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरफरोश फिल्म से ये गीत, इसरत अंसारी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मोहब्बत कर ले रे।
1: मोहब्बत कर ले, इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे श्यामक डावर और साथियों की आवाज, तरुणानंद, नितिन रायकवाड़ के बोल और राम संपत का संगीत।
2: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, संदेश शांडिल्य का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

गणेश हेगड़े की आवाज़ में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। मनोज संतोषी और विजय शर्मा ने इसे, माफ कीजिएगा, विकी शर्मा ने इसे लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनो तो दीवाना दिल, इस एल्बम से कमाल खान की आवाज़ में ये गीत जिसे लिखा है वीके मेहता ने, कमाल खान का संगीत।

सुनो तो दीवाना दिल इस एल्बम से आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाज में गीत, वी के मेहता के बोल, कमाल खान का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कैलाश खेर की आवाज में सुनिए ये अगला गीत जिसे उन्होंने लिखा है। कैलाश खेर, परेश और नरेश ने संगीतबद्ध किया है। एल्बम है कैलाशा।

कैलाशा, इस एल्बम से कैलाश खेर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
0: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा कवि

0: थी।
1: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजड़ली गांव से हुई थी।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
1: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
0: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
1: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
1: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
1: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थी। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
3: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
4: माँ।
5: हाँ बेटा।
4: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
5: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
4: हाँ पर
5: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
4: पर माँ हमारे
5: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
4: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
5: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
4: लेकिन माँ सुनो ना।
5: अरे बेटा, मैंने कहा ना।
4: सुनो माँ।
5: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
4: माँ

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो।
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
3: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
2: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
3: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
2: बेटा
3: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
2: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
3: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
2: लेकिन क्या बेटा?
3: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
2: अरे बेटा सुनो तो
3: माँ, एक लालटेन दे दो।
2: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
3: अरे माँ लालटेन दे दो।
2: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
4: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
0: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
1: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
0: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
3: माँ माँ माँ,
2: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
2: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
3: नहीं माँ, एक भी नहीं।
2: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
3: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
2: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
3: हाँ माँ,
2: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
0: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
1: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
0: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
1: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
0: विलेज ऑफ लाइट्स, यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
1: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
0: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
1: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
5: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके, और जाने कितना झूल चुके हो।
3: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
4: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
3: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
2: पढ़िए और समझिए।
3: कान लगाना,
2: ध्यान देना।
3: रक्कास,
2: नाचने वाला।
3: ताब,
2: ताकत बर्दाश्त।
3: हिंसा,
2: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
3: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
2: सवाल नंबर दो,
3: घड़ी की आवाज कैसी थी?
2: सवाल नंबर 3,
3: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
2: सवाल नंबर 4,
3: चट्टू, टिल्लू, खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में 2400 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पीजीआईएमएस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी लखनऊ से अब आनंद लीजिए सदाबहार नगमों का।

0: मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन के बोल। उन्हीं के संगीत से सजा था ये गीत सौदागर फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं संगीत और बोल रविंद्र जैन का।

0: आंखों के झरोखों से इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है, और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने, और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी, और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैम्प लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बरजात्या की फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं।

के चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। येसुदास और हेमलता की आवाजों में रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं पिया का घर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। येसुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों के बाद।
1: जरा नजरों से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, जिसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में। तो आज की इबारत या टेक्स्ट कौन सी है, ये आपको पढ़कर सुना देते हैं। हमने लिखा है, आज निगाहें मिली और इशारे हुए, दिल ने कहा वो हमारे हुए, फेरी नजर उसने और टूटा ये दिल, क्यों उस बेवफा के नजारे हुए। एक नन्हा सा सपना आंखों में

क्योंकि इन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है। किसी से जुदाई के वक्त सबसे पहले भारी होती हैं, क्योंकि कभी कभी नैनों से आंसू नहीं गिरते तो भी नैनों का सूनापन और दिल के खालीपन को ये आसानी से जाहिर कर देती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी, और भी हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी हैं, वो आपको बताएंगे ही। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपको किन की आंखों का इशारा याद है, और आपको आंखों की भाषा कितनी समझ आती है, और सबसे ज्यादा नजरों से बातें कब की जाती हैं? तो ये बातें आप बताइए, और कोई अगर किस्सा हो जिसमें आपने कुछ इशारा किया हो किसी को और उसने समझ लिया हो कुछ गलत, तो ऐसे मजाहिया किस्से भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइए।

गद्यांश में नयन नयन निगाहें पलक आंखों की बात होंगी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की भारत एक सुंदर कविता के रूप में जो प्रेम के शुरुआती आकर्षण, उसकी मासूमियत और फिर अचानक मिले धोखे या जुदाई के दर्द का बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण करती है। इसमें आंखों और नजरों के माध्यम से बयां होने वाले एहसासों की गहराई को बखूबी उकेरा गया है। प्रेम की कोमलता और उसकी बिछोह की कसक का बहुत ही संतुलित और काव्यात्मक मेल देखने मिलता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि कभी पलक झपकते ही कोई ख्वाब सा सामने से गुजर जाता है और आंखें उसे पकड़ने को फिर उसी दिशा में ठहर जाती है। निगाहें भी कितनी अजीब जुबान होती हैं, फिर बिना लफ्जों के जाने कितनी दास्तां कह जाती है। कभी नैनों की झलक से प्रेम का इजहार हो जाता है तो कभी पलकें झुकाकर दिल अपनी राज छिपा लेता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, न मनचाहा होता है, कुदरत सबको नवाजती है प्यार प्रेम और खुशी से, सब्र जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी का कहना है कि आंखों की भी अपनी एक जुबान होती है, बिना लफ्जों के कह देने की। कभी एक नजर में कोई अपना सा लगने लगता है, कभी वही नजर लौट जाए तो दिल में एक खाली सी जगह रह जाती है। आंखों में खिले छोटे से ख्वाब भी अजीब होते हैं, पलक झपकते ही बिखर जाते हैं, मगर उनकी किरचें देर तक यादों में चमकती रहती है। इश्क भी आंखों का ही कोई पुराना किस्सा है, जो कहा कम जाता है महसूस ज्यादा होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रम उन्हें अच्छे लगते हैं और वो देश देश भर में सारी जगह जब ये कार्यक्रम जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे एक और साथी का कहना है कि आज बातें नजरों की आंखों की है, पर यदि आंखें ही नम हो या आंसुओं से भरी हो तो कोई कैसे लिखे क्या लिखे। किसी ने आंखों में आंसू दिए, हम चाहते तो बदले में उसकी आंखें भी नम कर सकते थे, मगर दिल ने कहा छोड़ दो। हर दर्द का जवाब दर्द से देना जरूरी नहीं होता। हमने उसे माफ किया, कोई सजा नहीं दी, बस दिल से एक दुआ निकली, तुम जहां भी रहो खुश रहो और कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाना जितना मेरा दुखा है। दिल में दर्द हो फिर भी किसी के लिए नफरत ना हो। भाई हम तो यही कहेंगे कि आपकी आंखों में जो आंसू आए हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और ये गीत सुनिए, शायद इस गीत से आपको कुछ आराम हो। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो

यहूदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि कुछ साथी कह रहे हैं कि अनसुना सा गीत है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि आज सोच रहा था कमेंट है ना करूं, फिर दिल ने नहीं माना क्योंकि आप हम जैसों के कमेंट की ओर ध्यान ही नहीं देते। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कमेंट सामने आते हैं हम उन्हें जरूर पढ़ते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, गुस्से वाला ही कमेंट सही, नाराजगी वाला कमेंट ही सही शामिल तो हुआ। हमारे एक साथी कह रहे कि नजरें मिली तो लगा जिंदगी मिल गई, धड़कनों को जैसे एक नई साज मिल गई, पर वो मुस्कुराहट महज एक छलावा थी, वादों की कश्ती बीच भंवर में खो गई, एक आस जगी थी सूने दिल में जो पल भर में आंसुओं के धार में बह गई, खोए हुए उस साए को तलाशती ये राहें जहां कभी चाहतों के हंसी सिलसिले हुए, निगाहों के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, कभी पास लाते हैं तो कभी दूर कर जाते हैं, वो जो पलकों को उठाकर मुस्कुराना तेरा, अब वही यादें सीने में तीर सी चुभती हैं, कभी इन आंखों में वफा का नूर था, आज वही नैना तन्हाई के साए में अंगारे हुए। वही क्या बात है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि शब्दों से बनने वाले गीत यदि लिखे जाएं तो पहले तो शब्द ही इतने हैं कि उन्हें गिनने और गिनकर लिखने में कम से कम आधे घंटे में पूरे हो जाएं तो गनीमत है, फिर उन पर गीतों के चयन प्रक्रिया में तो यदि 4 से 6 घंटे लग जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाई पूरी की पूरी फिल्मों के गीतों को खंगालते हुए चयन करना कोई तो 1-2 घंटे का काम है ही नहीं, फिर कार्यक्रम तो केवल 1 घंटे का है। फिर भी भाई कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद के गीत लिख सकते हैं और यही तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आपकी पसंद के गीत और हमारे गीत कितने मिलते हैं यही तो पता चलेगा। और शब्द हो सकता है कि आप कोई नए शब्द चूज करने चुन लें उस इबारत में से जो हमें भी ना नजर आए हों, और ये बातें ही इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है। तो अपनी जो प्रक्रिया है आप जारी रखें, हमारी प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे क्या देखें। और हमारे एक और साथी कहती हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मोहब्बत का, प्यार या प्रेम का या जीवन का, कोई भी गहरा भाव वो अक्सर शब्दों का मोहताज नहीं होता और आंखों से ही बयां हो जाता है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जब जुबान खामोश होती है तब भी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। शब्दों में झूठ छुपाया जा सकता है लेकिन आंखों की चमक या उसकी नमी कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेम का असली स्वाद और सुकून किसी की सिर्फ एक नजर से महसूस किया जा सकता है। बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखकर पूरी बात समझ लेना सबसे खूबसूरत रिश्ता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि हमको हमारी गणित की अध्यापिका का खतरनाक तरीके से आंखें निकाल कर देखने का अनुभव आज तक याद है। उनकी आंखों का एक इशारा सारी क्लास को पल भर में ही खामोश करवा देता था। भाई ऐसे ही आपको याद आ रही है, किनकी आंखों का इशारा याद आ रहा है? क्या कोई बेहतरीन अच्छा अच्छा किस्सा भी हो सकता है, कुछ खूबसूरत किस्सा हो सकता है, कुछ ये डराने वाला किस्सा हो सकता है। अक्सर तो जब घर में मेहमान आते हैं तो भी आंखों का इशारा बहुत किया जाता है। कुछ ऐसा अगर आपको याद आए तो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल याद करके बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का वो गीत है और लिखा किसने है।

0: सारा। पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल।
1: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया और हमारे साथी अलग अलग बातें भी लिख भेज रहे हैं। हमारे साथी मोहम्मद रफी की आवाज पहचानना तो बिल्कुल पहचान ही सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुबान से तो झूठ पकड़ा नहीं जाता मगर आंखें सब बयां कर देती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जो बात जुबान नहीं बोल पाती आंखों से पता चलता है। कई बच्चे तो आंखों में ही डरते हैं, इन्हीं आंखों में हम कई सपने सजाते हैं लेकिन आंख खुली और सपना जैसे आंखों से ओझल हो जाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं होता, शायद किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। तो शायद जवाब भी आपको साथ ही साथ आपने दिया है। हालांकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स उनमें गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपकी बात पढ़ी हो तो हम जरूर उसे शामिल कर लेते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जब आंखों में आंसू हो और दिल जानता हो कि इन आंसुओं की वजह कौन है, फिर भी दिल उसी के लिए सजा नहीं दुआ मांगे, तो समझिए वहां नफरत से कहीं ज्यादा दोस्ती और इंसानियत बची हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नयन निगाहें आंख लोचन चक्षु पर बातें होंगी। आंखों का एक गुणधर्म है, वो अधिक खुशी और गम दोनों पर छलक जाती हैं। वाह क्या बात आपने कही। और एक खेल हुआ करता था जो बचपन में हम खेला करते थे, जिसमें एक दूसरे से नजरें मिलाकर रखे रहना होता था बहुत लंबे समय तक, और जो पहले पलकें झपकाता था वो हार जाता था। तो क्या आपने वो खेल खेला है और क्या आप उसमें जीता करते थे या नहीं, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम इस गाने को जब सुनते हैं जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, तो अजीब सी उधेड़बुन में होता हूं कि नजरों का निशाना भी कहीं चूक जाता है। ये तो ऐसा कमाल का हथियार है कि बिना किसी रसायन बिना टेक्नोलॉजी का ऐसा बम है कि जिस पर गिरता है हाय करके बस रह जाता है। आमना सामना हुआ कि दुश्मन चारों खाने चित, वो दाएं बाएं भाग भी नहीं सकता, खुद ही शिकार के पास पहुंच जाता है और समर्पित भाव से निवेदन करने लगता है कि दिल जिगर के साथ मेरी सारी संपत्ति सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बख्श दो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मजे के तौर पर लिख दी है, लेकिन कभी कभी तो निशाना चूक भी सकता है। तो क्या कभी निशाना चूका आपका, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बड़ी मजाहिया बात लिखी कि आंखों ही आंखों में मोबाइल बस गया, देखते ही देखते चश्मा लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, हमें सारी बातें आप बताइए। और कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बातें आप हमें बता सकते हैं जो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हैं। और कार्यक्रम में आप शामिल हो रहा है एक ऐसा गीत जिसके बारे में आप हमें बताइए कि किस फिल्म का गीत है।
2: झुके जो तेरे नैना

कंगन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुनने को बेताब हों तो दिल की बातें बताए बिना नहीं रह सकते, पर परिस्थिति वश कहा भी ना जाए तब भी आंखें एक दूसरे से बात करती हैं, कोई शोर नहीं करती पर चोर जरूर करती हैं। वही हमारे एक साथी का कहना

है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, और जब मैं आंख से इशारा करती कि चुप रहे तो सबके सामने बोलता था कि मम्मा आंख से इशारा करती हैं, तो सब हंसा करते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अब बिन्नी बुनना सीख रही हूँ, 35 टाके की नातू के लिए इधर उधर ध्यान गया तो कांटा चूक गया। ऐसा होता है, मतलब उसमें ध्यान रखना जरूरी है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के सभी पति अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नाचते हैं, यही सत्य है। भाई कितना सत्य है तो सब पति पत्नी ही बता सकते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, वो आंखों के बारे में कह रहे हैं कि निगाहों से शुरू हुआ जो सफर वो इशारों में खो गया, कभी हंसाया इन आंखों ने तो कभी अशकों में भिगो दिया एक नन्हा सा सपना, जो सजाया था पलकों पर न जाने वो पलक झपकते ही कहाँ गुम हो गया। तो हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नजर भी अजीब शय है, दो की चार हो जाए तो प्यार कहलाती है, झुकी झुकी नजर हो तो प्यार का इजहार होती है, कुछ लोग बॉस की नजर में चढ़ने के लिए दिन को रात और रात को दिन कहने से नहीं चूकते, दूसरी ओर मेहनती आदमी देर से ही सही मगर नजर जरूर आता है, उधार लेने वाला नजरें चुराता है और वसूलने वाला उसे खा जाने वाली नजर से देखता है। भाई क्या बातें कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी से नजर मिलती है तो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है, आंखों में खिले छोटे से सपने, नजरों के इशारे और दिल में उठते प्यार की नजरें, प्यार की लहरें मन को एक अनोखी खुशी देती है, कभी नजरें उठती हैं तो प्रेम झलकता है, कभी झुकती हैं तो शर्म और अपनापन, और कभी आंसुओं में छिपा दर्द सामने आ जाता है, यही नजरों और नैनों के अनकही किस्से प्रेम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वैसे नजरों के या कहें आंखों के रंगों के ऊपर भी कहा जाता है अलग अलग भावों के लिए, कि जब कोई गुस्सा होता है तो आंखें लाल कर देता है, और इस तरह की बातें भी होती हैं। क्या आप भी ऐसे कुछ किस्से या बातें जानते हैं, या कुछ कहावतें भी आप हमें बता सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं कि किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहने कि मैं तो सोचती हूँ घर की शांति बनाए रखने के लिए आंखों से ही बातें हों तो दुनिया एक शांतिमय जगह हो जाए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुके तो तेरे नैना गीत बहुत दिनों के बाद सुना, उन्हें अच्छा लगा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें नेमत हैं और शायद सबसे कीमती चीज जो हमारी है, जो है वो हमारी दो आंखें हैं। ये आंखें ही हैं जो हर भाषा को पढ़ने का हुनर रखती हैं। जीवन के सबसे कठिन पलों में अपने सबसे करीबी साथी को आंखों ही आंखों में सहारा देकर देखना। जीवन में जिसने आंखों की मूक भाषा पढ़ ली, समझ लो उसने आधी दुनिया का सच समझ लिया। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहां शब्द अधूरे रह जाते हैं, नैनों के इशारे काफी होते हैं। हृदय की अनकही भावना बिना बोले नजर ही कह देती है। आंखों की हल्की सी हरकत, पलकों का उठना, शर्मा कर झुक जाना, यही प्रेम की पहली और सच्ची लिपि है जिन्हें बिना छुए सिर्फ रूह महसूस करती है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि आंखें माँ की ममता भरी नजर के सामने सब फेल हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में पिता की आंखों की भूमिका ही प्रभाव डालती है। बच्चों और अन्य पर अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आंख ही होती है। आंखों के इशारे से ही प्यार झलकता है, सहम भी जाता है और दुखी भी होता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे कई बार स्कूल कॉलेज में कन्फ्यूजन होता था कि स्कूल की टीचर मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं या पीछे वाले से। ये शायद टीचर जिस तरह से देखा करती होंगी उससे इन्हें ऐसा लगता होगा। हमारे एक और साथी ने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा लिखा कि सालों पहले मैं मेरे पति का हाथ बटाने शॉप पे जाया करती थी। एक बार एक सेल्समैन आया जिनसे मेरे पति मिलना नहीं चाहते थे। उसने मेरे पति का नाम लेकर पूछा कि भाई साहब नहीं है, कब मिलेंगे। मैंने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे मना किया और मैंने सेल्समैन से कहा कि भाई साहब 2 दिन बाद मिलेंगे। 8 दिन बाद वो ही सेल्समैन मुझे मिला तो हंसकर पूछने लगा कि आप इतनी जल्दी कैसे भाई साहब के इशारे को पहचान गई, यानी कि उन्होंने देख तो लिया था लेकिन इस बात का मान रखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी हमें नजरों की भाषा समझ नहीं आती पर नजर लग जाती है, खासकर छोटे बच्चों को, नई ब्याहता बेटी बहू को ऐसा लोग कहते हैं, होता भी है। इसलिए हर माँ अपने बच्चों को काजल का टीका लगाती है नजर से बचाने के लिए। भाई ये भी माँ की ममता का ही एक रूप है। लेकिन कभी कभी जब माँ गुस्से में आती हैं तो उनकी नजरें देखकर बच्चे का जो हाल होता है वो तो वही समझ सकता है। क्या कैसा ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ हमें बताइए। और हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसमें आपको पहचानना है कि किस फिल्म का गीत है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और हमारे साथियों ने कहा कि नई फिल्म के गीत है, हमने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोई बात नहीं, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें कभी प्यार छलकाती है, कभी आंसुओं से भर जाती हैं, तो कभी दर्द और बेबसी में सुलगते से अंगारे बन जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा सजा आंखें ही भुगतती हैं, जो हर एहसास को चुपचाप सहती हैं। निसंदेह ये कविता केवल आंखों के मेल मिलाप की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए विश्वास की कहानी है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है, कभी जो निगाहें दिल का हाल मुस्कुराकर सुनाती थीं, आज वो पलकें आंसुओं का बोझ छुपाने में थक जाती हैं। वो नैनों की भाषा अब बस खामोशी से रोती है, जब मोहब्बत अधूरी हो तो रातें आंखों में ही कटती हैं। और एक और साथी का कहना है कि कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर ही काफी होती है, और जब निगाहें मिलती हैं तो जैसे अनकहे इशारों में ही मोहब्बत की कहानी लिख दी जाती है। आंखों में सजते हैं छोटे छोटे सपने, फिर इंतजार करती पलकें, और कभी नैनों में प्यार छलकता है, कभी यही नजरें झुककर शर्माती हैं तो कभी दूर होकर यादों में बस जाती हैं। इनमें कभी विरह के आंसू उतर जाते हैं और कभी वही आंखें शिकायत बनकर सवाल करने लगती हैं। वही तो आंखों की खूबसूरत भाषा है जिसे दिल पढ़ लेता है, अगर उसे सुरों में ढाल दें तो एक सुरीला मधुर गीत बन जाता है। तो ये तो बात हो गई, एक सुरीला मधुर गीत आपका इंतजार भी कर रहा है इस कार्यक्रम में, और आपकी बातें तो आप भेज ही रही हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप नजरों से या इशारों से कोई बात किसी को कहें लेकिन वो व्यक्ति आपकी बातें समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, तो क्या करते हैं आप ऐसे मामले में? और हमें पूरा यकीन है कि जो गीत आप आपको सुनवा रहे हैं आपको पता होगा किस फिल्म का ये गीत है, और नायक का नाम बताएंगे तो और भी अच्छा होगा।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शाहरुख खान इसमें नायक हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, और अगर खुशी होती है तो आंखों में ही चमक पहले होती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि इस समय मेरी नजरें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर सुरीला सफर की पोस्ट पर है और कान रेडियो की तरफ, जो सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उसका जवाब देने के लिए इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसा कहना होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब देखूं गुलाबी लाल पीली अंखियां, ये बात तो एक डॉक्टर किसी मरीज से पूछते हैं, पता नहीं कौन से फिल्म का गीत है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि निगाहें कभी खामोश नहीं होती, बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी प्यार की रोशनी बनती है, कभी दर्द की कहानी कह जाती है। किसी की एक निगाह में अपनापन मिलता है तो किसी की एक नजर में पूरा संसार। निगाहें दिल का आईना होती हैं, जो छुपा हो दिल में कर देती हैं इजहार। वहीं हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही गंभीर सवाल। उनका कहना है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो नजर उतारने के लिए क्या करें। भाई हमें तो इसके बारे में यही पता है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो आप भी उन्हें नजर लगा दें। वैसे हमारे साथी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आंखों के कलर की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, तो कई रंग आंखों के हमने देखे हैं और उन पर गीत भी बने हैं, तो ऐसा कोई गीत आपको याद आता है और कौन कौन से रंगों की आंखें आपने देखी हैं हमें बता सकते हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किस फिल्म का गीत किसने लिखा है।

0: आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। हमारे एक साथी कह रहे कि मैं तो इकलौता बेटा था, तू माँ की आंख का तारा था, कभी आंखें तरेर कर उन्होंने हमें देखा ही नहीं। ये हमें मतलब देखा हो ऐसा हमें याद नहीं। हाँ, पिताजी ने गुस्से में पढ़ाई को लेकर आंखें लाल पीली की तो माँ ने हमेशा बचाव किया। उनकी नजरें रास्ते पर टिकी रहती जब मैं स्कूल जा रहा होता या आ रहा होता। हमारे मास्टर ने स्कूल में एक बार दो डंडे मारे थे तो माँ मास्टर को खा जाने वाली नजरों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारे क्लास की बच्चों की नजरें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नजरों, आंखों और इन बातों पर लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट किया है जिसे हम हिंदी में कहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आंखें सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नहीं होती, बल्कि आंखें मानव शरीर में हर जगह होती। हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे छूने की शक्ति, स्पर्श की, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी जो इंद्रियां होती हैं, वो उन सभी की अपनी अपनी एक आंखें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली ये जो आंखें हैं हमारी, वो हमारे दिल की आंखें होती हैं माफ़ कीजिएगा। और उनका कहना है कि इन आंखों से हम बहुत सी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन वो चीजें दूसरे लोग नहीं देख सकते। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो, फरमाइश की रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हमारा नंबर नहीं लगता। भाई, हमारी तो यही उम्मीद है, यही हमारी शुभकामना है कि आपका नंबर भी जरूर लगेगा। लेकिन अभी नंबर आ गया है गीत का, तो दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया हमें बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।
1: निगाहें मस्ताना

ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: तना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देव आनंद इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए, और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे नसीब में आंखें मिलाना लिखा ही नहीं था, बच्चे भी मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं शासन नहीं करना चाहती। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें मिलाने का खेल मैंने खेला जो हमने पूछा था, और हमेशा मुझे हार मिली है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नहीं नाच सकता और ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब कोई मेहमान आता था तब हम सारे बच्चे वहां घूमते टहलते रहते थे क्योंकि टेबल पर सजाई गई भोज्य सामग्रियां हमें खूब लुभाती थी कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर माँ और ताई जी आंखों से इशारा करती कि चलो भागो यहाँ से। जब उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाता कि जाओ बाहर जाकर खेलो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं, आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, या फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए, और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो आंखें काली, भूरी, सुनहरी, नीली देखी है, पर फिल्मी गीतों में गुलाबी आंखें और कत्थई आंखों वाली लड़कियां भी देखी हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाबी आंखें छोड़कर सभी आंखें हमने देखी होंगी। और एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोस में जब कोई मेहमान आता था तो अपनी बेटियों को आंखों के इशारे से समझा देती थी कि किस प्रकार की चाय और नाश्ता देना होता है। आंखों के रंग से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक साथी ने कहा कि लंकापति रावण की आंखें हमेशा लाल हुआ करती थी। भाई इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी का वृंदावन में पर्दा जब बार बार बंद और खुलता है, ऐसा मानते कि ये छलियां हैं, कहीं किसी से अगर उनकी आंखें मिल गई तो उसके साथ ही चल देते हैं। तो चलिए हम भी चल देते हैं इशारों इशारों में बातें करने, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत पहुंच चुका है आपके सामने, और अब आप बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

कश्मीर की गली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: अपने शहर की सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और बस वाहन चलाने वालों पर एक नजर डालिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने का मतलब है खुद को और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को खतरे में डालना। ये बातें मीडिया के जरिए बार बार समझाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग गाड़ियां चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गाड़ी रोककर 2 मिनट बात करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो गाड़ी चलाते हुए ही की जा सकती है और खुद को और दूसरों को खतरे में डालना जरूरी है?
1: ए भाई, जरा देख के चल।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

दरअसल वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने शहरों की सड़कों को सुरक्षित बनाएं, हम सब यातायात के नियमों का पालन करें, हम सब दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारे फैशन, हमारी स्टाइल के अनुरूप क्यों ना बैठता हो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपने बाल खराब हो जाने के डर से या अपना चश्मे की स्टाइल नजर ना आने के डर से हेलमेट लगाना पसंद ना हो, लेकिन हेलमेट आपकी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हेलमेट के बिना बिल्कुल सफर पर निकलना ही नहीं चाहिए।

तमाम शहरों में ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चले, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हरी होने से पहले ही वो अपने वाहन दौड़ा देते हैं। जरा सोचिए कि दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा वाहन अगर आपके वाहन से टकरा जाएगा तो आपकी ये जल्दीबाजी आपको कहां पहुंचा देगी, ये सोचना कितना खौफनाक लगता है ना। जो सड़क सुहानी होती है वही सड़क आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। आइए हम अपनी और तमाम लोगों की हिफाजत करते हुए एक साथ अपनी सड़कों पर चलते रहें, किसी के लिए शामत या मुसीबत न बने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।

0: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
2: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
0: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
5: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में। कब जुल्म किसी का चलता है, ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
2: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
6: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
7: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
6: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
8: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
6: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
9: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ

0: वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं परवरिश फिल्म से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल, दत्ताराम वाडकर का संगीत।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फागुन फिल्म के इस गीत में आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: फागुन फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा ओपी नैयर की तर्ज।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जमाना है पुराना।
1: सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।
2: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
3: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
2: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
4: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
2: तो जरूर सुनिए।

0: ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे. सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत. किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव परमन.

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग।

0: पहले दे दो मेरा।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। चंचल वर्मा का और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का, सखाओं का। और नमस्कार नेहा आपको भी।
2: नमस्कार चंचल जी आपको और सभी सुनने वालों को भी। नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: तो आज इस मंच पर बहुत दिन बाद हम मिले हैं और बताते हैं कि आज किन विषयों पर हम मिलजुल कर बात करने वाले हैं अपने सुनने वालों के साथ।
2: हाँ, ये आपने सही कह दिया कि सुनने वालों के साथ किन विषयों पर बात करने वाले, क्योंकि हम तो आपस में बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुधा में बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका दूसरा भाग हम सुनने वाले हैं।
1: तो बिल्कुल हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पहला भाग सुन चुके हैं सुनने वाले और दूसरा भाग सुनेंगे। तो भूलने से मुझे याद आया कि भूलने की जो धीरे धीरे शुरुआत होती है, आगे चलकर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। तो इसके शुरुआती लक्षण जब हो तभी से पहचान लेना चाहिए, यानी कि हम बात करें अल्जाइमर या डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों की। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, इस पर कुछ बातचीत होगी।
2: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और मन में शांति बनी रहती जब अच्छा खाना खाने मिले, तो इसलिए प्रादेशिक व्यंजनों में आज हम लाए हैं कश्मीरी व्यंजन हाक साग और ल्योदूर चमन।
1: तो ये हाक साग जो है ना, कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
2: हाँ।

0: ये बहुत सुंदर गाना था ना, और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था और कहते ना कि हम भूले नहीं इस गाने को,
1: जी
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या
0: देखो
1: कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई चीज हम किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह
1: हाँ
0: से कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो
1: जी
0: उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की। तो देर नहीं लगाते हैं, सुनवा देते हैं कहानी।
1: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
4: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा, भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
5: देखता हूं

0: इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
1: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन डाले, मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
0: अरे रे रे, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? यहां के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहां बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी

0: में आ गई हो तो भाईजान ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकवे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुतामय बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है।
1: जी
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीज़ों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज़ को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीज़ों के साथ में बहुत चीज़ों को हल्के में लेती हैं,
1: हाँ
0: और जब हल्के में हम चीज़ों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत।
1: जी

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना, जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
3: और हमें तो याद है ये सारी चीजें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें खत्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरे नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
3: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60-70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर की ही महिलाएं हैं, कई उनसे सुना है कि धीरे धीरे ना चीजें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन चीजों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से जरूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
3: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नजरअंदाज न करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नजर आ रही, रोज के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो लक्षण है, मतलब आमतौर पर हम छोटी मोटी चीजें भूलते हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है, किस जगह हैं आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
2: और कई बार किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है। हमें कोई चीज किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज का हमें नाम याद नहीं आता। आपको अगर पेन

0: मंगाना है, कोई किताब मंगानी है,
1: हाँ
0: तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है, लेकिन आप सामने वाले को बयां नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता।
1: हाँ
0: तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग
1: हाँ
0: नजरअंदाज करते, भाई समय है, उम्र बढ़ रहा है, तो ये चीजें होना लाजमी है। लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
1: हाँ जैसे कि हम रोजाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरापान से दूर होते हैं, सामाजिक मेलजोल ज्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीजें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियां जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियां हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है, तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे, कि
1: जी
0: भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
0: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब
1: हाँ
0: शांति की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल। अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा
0: जी
1: ध्यान नहीं देते
0: तो देखियो ना,
1: हैं।
0: मैं भी भूल गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में
1: जी
0: और शांति दिवस का संदेश में पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो, पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज को, यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश वो जरूर करें, अपने आप से जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ, और जैसा कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा। और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इससे बनाना पड़ता है साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्रवाई भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता। इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो जहां शांति होती है वहां परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा
1: जी।
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर पीस बेल, यानी कि शांति का घंटा, वो बजाया जाता है। और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतरधार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफेद कबूतर होता है शांति का प्रतीक माना जाता है उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सबका काम है, नफरत से भरे शब्द ना बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से ना दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं किसी तरह से, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो आपने कहा दूसरों को सुने समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं।

0: उनकी बात भी सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली यानी मेरी धर्म पत्नी शांति बनाए रखी हैं और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
1: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा,
0: जी
1: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है। क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार्य क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो
0: बिल्कुल सही कहा
1: प्रतिक्रिया
0: आपने
1: नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज, तो
0: जी।
1: ऐसा वो भी बनाए रखें शांति ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है
0: जी
1: क्रिया की, और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्म पत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था। घर में दूध ना होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
0: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और
1: जी
0: ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती की जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना। तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे, है कि
1: बिल्कुल सही
0: नहीं?
1: बात है। आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए, और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदू चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है। और ल्योदू चमन का मतलब होता है ल्योदर मतलब होता है पीला, और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज़्यादा नहीं
0: कुछ भी
1: होता।
0: नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध, सौंफ, सौंठ, इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है
0: मलाई
1: वैसा
0: हो
1: वाला
0: जी।
1: दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए, पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब
0: जी
1: एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आंच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में, जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो, उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है। और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है, और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए। और इसमें जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारे मसाले एक साथ डाल देने। कुछ सेकंड जब ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी तब आंच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है। सूखे मसाले ना जलें इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है।
0: जी
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है, और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है, और कढ़ाई को ढक देना है। धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है, या मलाई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए, और गर्मा गर्म ल्योदूर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से।
0: फिर भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें, ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहां मिलता है, और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियां, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जैसे कि आपने कहा इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताजा होता है। तो आमतौर पर इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है। सब्जी को आप हल्का सा तोड़ कर या काट कर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है
1: जी
0: उसमें आप इसको छोंक दीजिए और बस वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी हूँ
1: ल्योदूर
0: जी,
1: चमन
0: ल्योदूर चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताजी
1: जी
0: सब्जियां जिस तरह से थोड़े से मसालों के
1: हाँ
0: साथ में ऐसा डाल के उसी तरह से इसे पका लिया जाता है। और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं, और गर्मा गर्मी सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं, और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियां सभी बनाकर खा सकते हैं। और भाई खुशबू तो फैल रही है जायके की, लेकिन
0: हाँ
1: मुझे लग रहा है कि जो संगीत की मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वो भी फैल जाए।
0: बिल्कुल।

0: चंचल जी, हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोजमर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीजें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं।
1: तो
0: तो
1: बस
0: अपना
1: आप समय
0: ख्याल
1: पर
0: रखें।
1: उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना। और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है, तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूँ, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूंगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए। और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीजें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुंच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज्यादा ब्लड जा रहा है ब्रेन में, खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलता है, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकेंड सवाल पूछा क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, आंसर इज येस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं
1: जी।
2: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से एक मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं
1: जी।
2: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे अस्पताल ज्यादा हो रहे हैं, सिटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज्यादा होते पा रहे हैं।
1: अच्छा,
2: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए।
2: करेक्ट, अच्छी है बट

0: ने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं बिल्कुल,
1: करेक्ट करेक्ट। तो
0: तो ये सब भी कारण हो सकता है
1: वो
0: क्या
1: एक
0: जिस
1: ही
0: पर?
1: कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, रक्त दाब, वो कन्फर्म है बढ़ता ही है उस वक्त। तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का, प्रेशर
0: जी
1: इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं,
0: जी
1: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
0: जी
1: बट जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो ब्रेन
0: हाँ
1: हेमरेज, जिसमें काफ़ी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
0: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
1: ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी। पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहा है।
0: ओहो
1: अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज़्यादा होती है। तो
0: जी
1: उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते हो तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब
0: ठीक है।
1: रिकवरी का जो समय है वो काफ़ी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेन को
0: ओ
1: इम्पैक्ट करता है। तो
0: जी
1: कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज़ बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल ख़राब बीमारी, बट राइट इज़ कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
0: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश
1: स्ट्रोक
0: प्रयास किया जा सकता है ठीक करने का?
1: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर
0: ओ
1: में मोच आ गई,
0: जी जी
1: उसके कारण
0: जी
1: मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफ़ी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरीफेरी में है, वहाँ से न्यूरो के सेंटर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो। तो
0: जी
1: सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफ़ी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो
0: ओके
1: इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है? क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज
1: करेक्ट,
0: होते हैं,
1: बहुत
0: तो इसका क्या संबंध
1: खून
0: है?
1: अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो
0: ओ
1: जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयाँ, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे हैं, काफ़ी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
0: जी जी तो डॉक्टर तक पहुंचने

0: के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है? मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए क्या?
1: ये एक
0: बिल्कुल
1: मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पालपिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफ़ी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्पिन, और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज़ है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना।
0: ओहो
1: क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और
0: ओहो
1: दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है।
0: जी
1: तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था, और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन
0: जी जी
1: हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
0: ओके
1: तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूँ। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
0: बिल्कुल। और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना?
1: इसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो
0: हाँ
1: उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो हम बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि फ़ोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूँगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन, एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए।
0: जी जी
1: उससे
0: जी
1: भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो
0: जी
1: एक साथ सब साफ हो जाता है।
0: जी जी
1: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं, अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, वो ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, और हम एक ज़रूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं?
1: पसंद का, अब मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव, साथिया तूने क्या किया, बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम,
0: जी,
1: वो
0: SP
1: सुनना चाहूंगा।
0: बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर, अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो
0: जी
1: उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए चलाए वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना 2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया ऑलरेडी स्ट्रोक काफ़ी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना 2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाता है। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए
1: बहुत
0: परिवार की?
1: सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, 3 दिन से अस्पताल में रख के फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफ़ी पेशेंट मान जाते हैं फैमिलीज, काफ़ी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज़ दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन,
0: जी
1: दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही
0: वो
1: सही
0: सही
1: था।
0: था
1: बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो
0: जी
1: बीमारी का जो आउटकम है वो
0: हाँ
1: समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको
0: जी
1: समझाना काफी मुश्किल
0: मुश्किल
1: बोल
0: होता
1: सकता हूँ
0: है।
1: मैं।
0: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए हो,
1: करेक्ट करेक्ट।
0: तो
1: तो वो जो एक
0: ये
1: मिथ है
0: जो
1: कि मेरे
0: बात
1: गांव
0: है।
1: में तो ऐसा हुआ था, हमने
0: हाँ
1: उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं इसमें तो कुछ है नहीं।
0: जी
1: बट
0: जी
1: जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब
0: जी
1: अदर देन एलोपैथी कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है आप वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
0: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
1: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया है, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिड है, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ खेल रहा हूँ भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है। अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
0: ओहो
1: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज अ
0: अच्छा
1: मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, दो
0: जी
1: साल 5 साल। और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
0: जी
1: इसलिए
0: जी
1: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयाँ शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने

0: बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू।
1: जी
0: दोज
1: जी
0: आर एकदम सेफ दवाइयाँ रहती है। मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए। अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो,
1: बिल्कुल।
0: ऐसा।
1: और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा, एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: जी, सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली इन मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज़ वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी
1: तो उसका
0: तो
1: हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
0: दवा
1: तो
0: ले
1: नेट
0: लो।
1: पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो है उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सीटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहा है। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई दे, दर्द एकदम गायब हो गया। और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने
0: जी
1: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे हैं, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
0: जी
1: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: जी
1: अदरवाइज अभी भी ऐसा है, 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और
0: जी
1: दवाइयाँ ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े। कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फ़ोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए। और कुछ दवाइयाँ जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं।
0: जी
1: और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज़ ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज़ ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफ़ी लंबा चलता है।
0: जी
1: तो काफ़ी लोगों को कॉफ़ी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफ़ी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है। तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है, और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह
1: करेक्ट,
0: से भी होता
1: एग्जैक्टली,
0: है?
1: जैसे मैंने बताया, चश्मा,
0: हाँ
1: नाक, किसी को दांत में

0: इन्फेक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल
1: जी
0: करवाना
1: जी
0: है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
1: इसकी वजह से भी
0: तो
1: सिर दर्द होता है।
0: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल वो
1: ओ
0: जाना है ब्रेन पे ही। काफी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत है पेट की, पेट में
1: हाँ
0: जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है
1: जी।
0: उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, MRI, CT स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी
0: हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
1: जी
0: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक MRI करा लूँ। तो हमारे लिए MRI करवाना एकदम आसान चीज़ है, मैं लिख दूँ 10 मिनट में उसका MRI कहीं जाके हो भी जाए।
1: जी
0: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम चाहते हैं कि बिना MRI के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोज कर सको।
1: जी जी
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से MRI कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में
1: जी
0: इन्फेक्शन हो, हाफ इन्फॉर्मेशन,
1: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ
1: गया है
0: मैं।
1: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम, तो
0: करेक्ट
1: इसलिए
0: करेक्ट
1: सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय
0: करेक्ट
1: डॉक्टर
0: करेक्ट
1: से
0: करेक्ट
1: संपर्क
0: करेक्ट
1: कर
0: तो
1: लें।
0: वो जो
1: और
0: 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके। जैसे
1: जी
0: ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है। तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच
1: ओ
0: कौन सी करनी है, CT स्कैन करना है, MRI करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है, तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है। उसके लिए
1: जी
0: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एब्सेंट माइंड होना, याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं? काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल ICMR जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो पर उनके जो चलने का पैटर्न है, डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहे हैं, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।
0: करेक्ट।
1: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते
0: फेमस
1: हैं,
0: सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में है
0: जी
1: ये गाना।
0: करेक्ट।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है क्या?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही
0: जी
1: अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम हैं। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
0: जी
1: ब्रेन ट्यूमर इज़ हार्डली 5 से 7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है,
0: जी
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके रेडिएशन जिससे भी क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है।
0: ओ
1: तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो
0: कैंसर
1: मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत ये है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए, या देखने में प्रॉब्लम है, एमआरआई किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है।
0: जी
1: फिर एमआरआई आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि एमआरआई के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और
1: देखिए जैसे ब्रेन
0: अचानक?
1: स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। नॉन
0: दबे
1: स्पेसिफिक
0: पांव आने
1: मतलब
0: वाली बीमारी।
1: करेक्ट, तो काफ़ी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयाँ खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि एमआरआई कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तब पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके एमआरआई कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ तो एमआरआई इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी Tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी
0: जी
1: में, वहाँ एमआरआई छोड़े आपको न्यूरो के पास पहुँचना ही इतना मुश्किल हो जाता है,
0: जी
1: तो हर
0: जी
1: एक का एमआरआई करना मुश्किल होता है।
0: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं
1: ऐसे
0: जिससे?
1: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप

0: के रखें दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो हमारे देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत मेरे श्रोताओं को ना पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है
0: हाँ,
1: जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं,
0: जी
1: तो अगर वो मरीज बहुत जल्द

0: अगर आता है एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन। तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।
1: जी
0: प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
1: जी तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी, जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे वो 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना खाना बाहर की लाइफ एक्टिविटी वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती।
0: तो
1: तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
0: एक एक
1: जरूरी?
0: लक्षण है उसका। काफी बार हमने एमआरआई किया, पेशेंट को फिट्स आया था, एमआरआई करके देखे, एमआरआई एकदम नॉर्मल है। तो एमआरआई करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए।
1: जी
0: बट नॉर्मल एमआरआई है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है।
1: जी
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो
1: जी
0: कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ।
1: जी
0: तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
1: जी जी
0: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: तो उसके क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं
1: ट्यूमर
0: गांठ।
1: वही
0: तो
1: है
0: बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है,
1: जी।
0: जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
1: जी तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: एमआरआई हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है।
1: और
0: तो
1: फिर
0: उसके
1: इसका
0: हिसाब से इलाज डिसाइड होता है। सादा गांठ है मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम
1: जी
0: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ
0: ऐसा
1: क्या?
0: जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60

0: वाला एज जो है वो कॉमन, बट ऐसे मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
1: जी
0: पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहते हैं, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है, किसी को नहीं पता।
1: जी
0: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लिए आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं, बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है? किस तरह की डाइट
0: स्ट्रोक,
1: जो
0: यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहा है, तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो
1: जी
0: सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है, तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहा वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है, जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज़, बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप
1: जी
0: जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज़ की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी? तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो
1: जी
0: सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज़ बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डाइग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि
1: जी
0: एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो
1: जी
0: जो
1: जी
0: आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज़ें, नशा बंद कर दो, बहुत फ़ायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों
1: बिल्कुल
0: में कुछ भी फ़ायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियाँ जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेनजी जो
0: करेक्ट
1: सुन रहे हैं
0: करेक्ट
1: और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए
0: करेक्ट
1: बहुत फायदेमंद बात है ये।
0: करेक्ट तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट
1: जी
0: सारे छोटे सिटी में भी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं,
1: जी
0: बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया, और दिक्कत है कि उनका इमिडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
1: जी
0: ही
1: जी
0: होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है,
0: बराबर।
1: तो इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए,
0: तो
1: जरा
0: हर
1: बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो
1: जी
0: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या?
1: जी जी
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हॉर्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न

0: टन ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो, जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है। तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी
0: तो किसी हद तक येस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी वन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है। बट एक है कि ये दवाइयाँ इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता
0: करेक्ट,
1: है,
0: तो उस
1: तो ये क्या कोई न्यूरो
0: न्यूरो रिलेटेड
1: प्रॉब्लम?
0: ही है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगता है। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है, तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया, उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो
1: जी
0: उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको को बोलता है फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम
1: जी जी
0: फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो, उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है, उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर्स या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं।
1: जी
0: बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू जी।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने सफल जीवन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, साथ ही अपने खान पान पर भी ध्यान रख रहे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनना भूल नहीं रहे होंगे। दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन, यानी 21 सितंबर को। दोस्तों, आज के दिन यानी 21 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, समय पर पहचान और रोगियों और उनके परिवारों को सहयोग देने का संदेश देना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बढ़ती उम्र के साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अल्जाइमर क्या होता है। अल्जाइमर एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और दैनिक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। ये डिमेंशिया का सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है। शुरुआत में व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, लेकिन समय के साथ समस्या गंभीर हो सकती है। अल्जाइमर के प्रमुख लक्षणों को जानना और समझना

बेहद जरूरी है। इनके प्रमुख लक्षण हैं कि बार बार बातें या घटनाएं भूल जाना, परिचित लोगों या स्थानों को पहचानने में कठिनाई होना, बोलने या सही शब्द याद करने में परेशानी, निर्णय लेने और दैनिक काम करने में कठिनाई, व्यवहार और स्वभाव में बदलाव जैसे चिड़चिड़ापन या भ्रम। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्जाइमर रोग में किन लोगों को सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में जोखिम अधिक होता है। परिवार में पहले किसी को यदि ये बीमारी है तो वो भी इस रोग से पीड़ित हो सकता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य कारण भी जोखिम बढ़ा सकते हैं। साथ ही अस्वस्थ जीवन शैली और मानसिक सक्रियता की कमी भी प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, अल्जाइमर रोग की सबसे अधिक आवश्यकता धैर्य, प्रेम और सम्मान की होती है। परिवार को उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और उन्हें सुरक्षित वातावरण देना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समाज का भी दायित्व है कि ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील और सहयोगी बने। विश्व अल्जाइमर दिवस केवल एक बीमारी के बारे में जानकारी देने का दिन नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने का अवसर है। समय पर पहचान, सही उपचार और परिवार का सहयोग रोगी के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, आप भी अल्जाइमर के प्रति जागरूक रहें। विश्व अल्जाइमर दिवस पर चर्चा बस यहीं तक।

दोस्तों आइए अब चलते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर जो कि है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। दोस्तों यदि आप अपने भोजन में मोटे अनाज यानी मिलेट्स या श्री अन्न को शामिल करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को

0: और बेहतर बना सकते हैं। एक उम्र के बाद आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप इन सब से बचना चाहते हैं, तो आज से ही अपने भोजन में शामिल करें मिलेट्स यानी श्री अन्न को। और क्या शामिल करना है वो आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक मोटे अनाज मिलेट्स या श्री अन्न जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सावा फाइबर, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन के बेहतर स्रोत हैं, जो पाचन, हृदय स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण और मधुमेह को प्रतिबंधित करने में सहायक होते हैं। ग्लूटेन मुक्त होने के कारण ये पचने में आसान और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि श्री अन्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले बाजरा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर का समृद्ध स्रोत। यह शरीर को गर्मी देता है और सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर आता है रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। इसमें अन्य सभी अनाजों की तुलना में सबसे अधिक कैल्शियम 300 से 350 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, जो हड्डियों के लिए बेहतरीन है। ज्वार, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर ग्लूटेन मुक्त अनाज। कोदो, पचाने में बहुत आसान और ऊर्जा प्रदान करने वाला। कुटकी, जिसे लिटिल मिलेट भी कहते हैं, आयरन और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। सावा या कंगनी फाइबर का उच्च स्रोत है। मोटे अनाज का स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। पाचन और कब्ज में राहत, यानी कि उच्च फाइबर सामग्री आंतों की सफाई करती है और पाचन तंत्र को मजबूत करती है। मधुमेह नियंत्रण करने में भी मोटे अनाज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रागी और अन्य मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक है। और इन मोटे अनाजों से आप अपने वजन को भी नियंत्रित रख सकते हैं। फाइबर से भरपूर होने के कारण ये जल्दी भूख नहीं लगने देते, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी मोटे अनाज या श्री अन्न लाभकारी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। इनको उपयोग करने के भी कुछ नियम हैं दोस्तों। अगर आप इनको भिगोकर खाएंगे तो इसमें पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने के लिए मोटे अनाजों को पकाने से पहले रात भर भिगो लीजिए। बाजरे की रोटी, रागी का डोसा, कोदो की खिचड़ी या ज्वार का दलिया आहार में जरूर शामिल करें। पकाते समय आप थोड़ा इनमें घी भी डाल सकते हैं। फाइबर की अधिकता के लिए मिलेट्स खाने के दौरान पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दोस्तों, ये अनाज चावल और गेहूं की तुलना में बेहतर पोषण देते हैं और मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक हैं। दोस्तों, इन मोटे अनाजों को सुपर फूड भी कहते हैं। सुपर फूड एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो अपने उच्च पोषक तत्वों के कारण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। मिलेट्स में पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण इन्हें सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्री अन्न यानी मिलेट्स की विशेषताएं क्या क्या हैं। जलवायु प्रतिरोधी होती है, ये फसलें कम पानी में भी पनप जाती हैं और सूखे को सहन कर सकती हैं। मिलेट्स में फाइबर, लोहा, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों, और प्रोटीन भी होता है। दोस्तों, ये सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए भी उपयुक्त है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक है। भारत का योगदान विश्व उत्पादन में लगभग 41% और एशिया के कुल उत्पादन में 80% से भी अधिक है। भारत विश्व के शीर्ष 5 मिलेट निर्यातक देशों में शामिल है। दोस्तों, मोटे अनाज के नियमित सेवन से स्वास्थ्य लाभ में मदद मिलती है। एनीमिया में, हृदय रोग में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये सहायक होते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की भी पहल यही है कि लोग मोटे अनाज को ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में शामिल करें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं। मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने स्वास्थ्य को और इम्प्रूव करेंगे, साथ ही इन सुपर फूड्स यानी मिलेट्स यानी श्री अन्न को या मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करेंगे।
1: सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
3: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
2: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
3: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
2: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
2: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
3: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
2: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
3: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
2: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का अंक आप सुन रहे हैं अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि क्या विशेष है आज के दिन, यानी 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। ये दिन हमें ये संदेश देता है कि दुनिया में प्रेम, भाईचारा, अहिंसा और आपसी सम्मान ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस विश्व में शांति स्थापित करने और हिंसा और संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आज के समय में जब दुनिया में कई हिस्सों में युद्ध, आतंकवाद और हिंसा

हिंसा जैसी समस्याएं मौजूद हैं, तब शांति का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण है जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस कर सके। शांति से समाज में प्रेम, सहयोग और विश्वास बढ़ जाता है। जब समाज में शांति होती है, तब शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और विकास भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। परिवार से लेकर पूरे विश्व तक शांति सुखी जीवन का आधारशिला है।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कभी किसी अगले अंक में। तब तक दीजिए अनुमति अपने रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में सभी बहनों का स्वागत है और आज आपसे बातचीत करेंगी आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो सबसे पहले बताइए बहनों, आप लोग कैसी हैं? हमें उम्मीद है कि प्यारी बहनें बिल्कुल अच्छी और अपने परिवार में खुश होंगी। बहनों इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान आपकी अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना देती है। मैनू करते हैं अब कुछ खट्टी मीठी बातें और अब बात करेंगे विश्व अल्जाइमर दिवस पर। मैनू यह दिवस हर साल 21 सितंबर को यानी आज के दिन मनाया जाता है। मैनू इस दिन सभी लोगों को अल्जाइमर बीमारी के बारे में बताया जाता है ताकि वे इस बीमारी को समझ सकें और जानें और दूसरे परेशान लोगों की मदद कर सकें। मैनू बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं रहता है ना कि ये बीमारी है क्या। बहनों बिल्कुल आसान भाषा में बोले तो यह बीमारी जिसमें इंसान की याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, जिससे बहनों उसे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, जैसे कोई सामान कहाँ रखी है या क्या बात किया, क्या नहीं किया, किससे कुछ पूछा, बहनों ये सब धीरे धीरे भूलने लगते हैं। बहनों कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है ना, और हमेशा उनकी कही हुई बातों को मानना चाहिए और सुनना भी चाहिए। बहनों बड़े बुजुर्ग में ये परेशानी एक उम्र के बाद होने लगती है, किसी किसी में ज़्यादा हो जाती है तो किसी किसी में थोड़ा कम, लेकिन होने लगती है कि वो बार बार पूछते हैं ये कहाँ गया, ये है नहीं है, मतलब एक ही बात कई बार पूछना। बहनों उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और आराम से बिल्कुल बताना चाहिए ताकि उन्हें बातें याद रहे और वो समझें। बहनों आइए सुनते हैं इसी विषय पर भेंट वार्ता, अल्जाइमर रोग की देखभाल में परिवार की भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील गोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज सोनभद्र, और उनसे बातचीत कर रहे हैं सचिन वर्मा जी। तो बहनों आइए सुनते हैं।
1: साथियों, किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना उसकी ऊंची कद काठी से नहीं, बल्कि उस स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क के होने से समझा जाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना उसके कार्यों के प्रति स्फूर्ति, विवेक इत्यादि के साथ साथ स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति पर भी निर्भर करता है, किंतु कभी कभी स्मरण शक्ति में छिड़ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इस रोग का नाम है अल्जाइमर। अक्सर बढ़ती उम्र के साथ भूलने की समस्या को सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन लगातार याददाश्त कमजोर होना अल्जाइमर जैसे गंभीर रोग का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में इस रोग के शुरुआती लक्षणों को पहचानना, इनके कारणों को समझना और समय रहते चिकित्सकीय परामर्श लेना बेहद आवश्यक है। तो आइए आज अल्जाइमर रोग के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील गौड़। आप मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। आकाशवाणी ओबरा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है डॉक्टर साहब।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें आप बताएं कि अल्जाइमर रोग क्या है और इसके प्रमुख कारण एवं जोखिम कारक कौन कौन से हैं?
3: अल्जाइमर एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है
2: जी,
3: जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता, व्यवहार और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होने लगती है। यह डिमेंशिया का आम कारण है। अल्जाइमर उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है, इसका कोई कारण नहीं होता है। इसमें आनुवंशिक कारण होते हैं, मस्तिष्क में होने वाले कुछ जैविक परिवर्तन के कारण होता है ये। इसके प्रमुख जोखिम या कारण हैं, जैसे बढ़ती उम्र हो गई, परिवार में किसी के अल्जाइमर हो या आनुवंशिक बीमारी हो, या बहुत ज्यादा बीपी हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंसिव हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी हो, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हों, अल्कोहल लेते हों और शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो समाज से है अलगाव, जिससे आदमी अकेले रहता है, दूसरे लोगों से बात नहीं करता है, या फिर कोई चोट वोट लगी हो पुरानी, ये सब इसके मेन कारण हैं। इसलिए

0: केवल याददाश्त पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण क्या हैं, जिन्हें परिवार के सदस्यों को गंभीरता से लेना चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल आपका है। सबसे शुरुआती लक्षण हाल की घटनाओं को बार बार भूलना होता है। उदाहरण के लिए, अभी आपसे बातचीत को भूल जाना, एक ही सवाल बार बार पूछना, हाल में रखी हुई चीजों को बार बार ढूंढना, ये शुरुआती लक्षण हैं। इसके अलावा जिससे जो हमारा रोजमर्रा काम है उसे भूल जाना, या पैसों का बिल का हिसाब न रख पाना, और जिस रास्ते हम आते जाते रोज पर डे हैं उस रास्ते को भूल जाना, और तारीख दिन इसको भूल जाना, जैसे आज बुधवार, से आज बुधवार है, बृहस्पतिवार है, तो वो हम कहेंगे कि नहीं, जो मरीज आता है वो बोलता है कि नहीं आज बुधवार ही तो है, अभी तो बुधवार आज ही आया है, लेकिन एक्चुअली में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार होता है। और कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पाना कि हाँ हमें ये काम करना है नहीं करना है, और उसके जो व्यवहार है इसमें भी अंतर आ जाता है काफ़ी ज़्यादा है। और जो पहले जिससे जिस काम में रुचि है, जैसे बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, किसी में रुचि होती है, वो भी रुचि ख़त्म होने लगती है।
1: अच्छा,
0: ये सब इसके महत्वपूर्ण संकेत हैं। खास बात यह है कि यह बीमारी बढ़ने पर व्यक्ति की रोजमर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। अगर परिवार में ऐसा कोई बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है, आपको ऐसा कोई लगता है कि आपके घर में ऐसा हो रहा है धीमे धीमे, मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए तुरंत। ये पहचान है, शुरुआती लक्षण है। जब ये लक्षण बढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो जिसे रोजमर्रा के कोई काम अपना नहीं कर पा रहा, जैसे आप घर में हैं या आपके बाथरूम किनारे है तो वहां नहीं जा पा रहे हैं, पूछते हैं हमारा बाथरूम कहाँ है, या फिर हमने कहीं चश्मा रख दिया, या फिर कुछ पढ़ना है तो चश्मा खोज रहे हैं कि कहाँ चश्मा है, या रिमोट कहीं रख दिया, तो हम आप आमतौर पर रिमोट कहीं रख देते हैं, चाबी कहीं रख देते हैं, घड़ी रख देते हैं, मोबाइल फोन रख देते हैं, हमें 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद याद आ जाता है,
1: याद आ जाता है
0: आपका नाम भी, जैसे है कि हम आपसे मिले हैं, आपका नाम 2 सेकंड में याद आ जाएगा, याद नहीं तुरंत आता है। लेकिन ये लोग, उनको जो अल्जाइमर वाले होते हैं, उनको याद नहीं आता है, तो वो जैसा वो परेशान होने लगते हैं
1: मतलब उन्हें याद ही नहीं आता है
0: जी।
1: कि ये घटना हुई भी थी कि नहीं,
0: नहीं,
1: और ऐसी चीज भूलते हैं जिन्हें लगता है कि ये तो कैसे भूल सकता है आदमी, तो फिर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए उसमें।
0: जरूर, जल्द से
1: बिल्कुल,
0: जल्द डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी आपने बताया कि भूल जाते हैं हम चीजों को, तो एक हर व्यक्ति में फिर आता है ये सोचने लगता है कि सामान्य भूलने की आदत और अल्जाइमर से जुड़ी स्मृति समस्या में कोई अंतर है या नहीं?
0: ये बहुत जरूरी सवाल है कि आदमी नॉर्मल भूलने को अल्जाइमर ना समझ ले,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये नॉर्मल चीज घर में सबके साथ होती है। तो बहुत अच्छा सवाल आपका है ये। उम्र बढ़ने पर कभी कभी चाबी, मोबाइल, चश्मा कहाँ रखा है याद नहीं रहता, लेकिन कुछ देर बाद याद हो जाता है। लेकिन अगर अल्जाइमर होता है तो ये चीज एक बार हो गई, रोज होती है, बार बार होती है, दिन में कई बार होगी, तो ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये अल्जाइमर वाले पूरे लक्षण हैं। जैसे सामान भूलना किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम कुछ समय के लिए याद नहीं आता, जैसे हम आपसे मिले हैं कुछ दिन बाद तो आपका नाम नहीं आता, चांस याद, कुछ देर बाद याद आ जाता है, लेकिन अल्जाइमर वाले में ऐसा नहीं होता, उसमें याद आता ही नहीं है कि हमसे इनसे मुलाकात हुई है। अल्जाइमर वाले में क्या होता है कि व्यक्ति बार बार नाम पूछता है कि आप कौन हैं, या फिर बातचीत करने में परेशानी होती है, जैसे कि हमें आपसे मुलाकात ही नहीं कभी हुई है, ये समस्या बहुत बढ़ने लगती है, तो ये अल्जाइमर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये परेशानी वाली बात है। और नॉर्मल जो होता है उसमें कोई नहीं, एक दिन भूल गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड याद आ जाता है, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है।
1: बिल्कुल, ये तो हर व्यक्ति के साथ होता है, कभी कभी वो चीज़ें हम रखते हैं फिर हम खुद ही पूछते हैं घर वालों से, कह रही ये कहाँ रख दिया है, तो इसको अल्जाइमर से न जोड़े, कभी कभी ऐसा भी होता है।
0: जैसे कभी कदार बिल भरना भूल जाना, ये पैसे का लेन देन आगे पीछे हो जाना, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये समस्या बार बार हो रही है कि आप नॉर्मल, जैसे कि आप बिल नहीं, जैसे कल आपने पैसे निकाले, आपको याद ही नहीं, आपने आज चेकबुक देखा, अरे कल तो मैंने पैसे निकाले नहीं, अब ऐसा ही आपके बार बार हो रहा है आपके साथ है। जैसे पढ़ने जा रहे हैं पेपर, न्यूज़पेपर, कुछ भी पढ़ने जा, चश्मा एक जगह रखते हैं तो मिल जाता है, इसमें क्या होता है, चश्मा हमारा कहाँ गया, हम बार बार चश्मा ही खोजते रहते हैं, याद ही नहीं आता कि हमने कहाँ रखा है, ये अल्जाइमर में आ जाता है।
1: बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर साहब, अल्जाइमर का पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांच और चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई जाती है?
0: अल्जाइमर की जांच कोई मुक्त स्पेशल जांच कुछ नहीं होती है कि ब्लड जांच करवा दो या फिर कुछ करवा दो कि मालूम हो जाए। इसमें क्या होता है कि सीटी स्कैन, एमआरआई होता है, उसमें कुछ चेंजेस मिल जाते हैं दिमाग में, लेकिन इसमें जो है कि सबसे अच्छा है कि आप इसके जो शुरुआती लक्षण जब भी मालूम हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो कोई ऐसा इंसान जाए जो घर का हो, जो सब जानता है उनके बारे में हो।
1: मतलब मरीज के साथ जो
0: हाँ,
1: जाए।
0: मरीज साथ जाए, घर वाले वो सब जानते हैं उनके बारे में, कहीं पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई बीपी शुगर डायबिटीज तो नहीं है, या फिर कोई स्मोकिंग कोई ऐसा करते हो, सब जानते रहें, पिछले ऐसा कहीं किसी मम्मी पापा को उनमें हिस्ट्री हिस्ट्री तो नहीं हो, जो सब चीज़ें बता दें, वो आए बताएं। तो इसमें ज़्यादा यह है कि क्लिनिकली ज़्यादा ही इसमें हो है।

0: और सिटी स्कैन एमआरआई होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे रिलायबल, मतलब रिलायबल क्या कह सकते हैं कि उससे काफ़ी बहुत एडवांस स्टेज है, जाते ही पहले सिटी स्कैन एमआरआई नहीं करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब डॉक्टर साहब हम जब भी ऐसे मरीज के साथ जाएं जो अल्जाइमर से ग्रसित हो, तो उसके साथ परिवार का ऐसा सदस्य जाए जो पारिवारिक हिस्ट्री भी जानता हो, जिससे वो आपको सारी चीजें बता सके और उस पेशेंट के बारे में तो जानता ही हो। क्या अल्जाइमर से बचाव संभव है? इसके जोखिम को कम करने के लिए खान पान, व्यायाम और जीवन शैली में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अल्जाइमर को पूरी तरह रोकने की गारंटी देने वाला कोई उपाय नहीं है। हाँ, इसका कोई पूरा उपाय नहीं है कि पूरा सही हो जाए, लेकिन इसके ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इसका जोखिम है, जो खतरा है, उसे हम कम कर सकते हैं और मस्तिष्क को स्वस्थ करने में मदद कर सकते हैं। जैसे पहले नियमित व्यायाम करें, तेज चलें, साइकिल चलाएं, अपने शरीर जो क्षमता है उसके अनुसार काम करें। दूसरा है ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, इन सबको कंट्रोल करें। तीसरा है संतुलित भोजन करें, हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। चौथा है धूम्रपान अल्कोहल से बचें। और पांचवा है दिमाग को सक्रिय करें, किताब पढ़ें, नॉवल पढ़ें, या फिर क्या करते हैं कि पहेलियाँ, संगीत गाएं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो घर के लोग हैं उनके साथ रहें, उनके साथ बात करें, उनके साथ जो चीजें हैं अपने डिस्कस करें।
1: बिल्कुल, जो उनसे ग्रसित व्यक्ति है, परिवार के अन्य सदस्य, चीजों पे बात करें और उनका मन हल्का रखें।
0: और परिवार का सहयोग होना इसमें बहुत जरूरी है कि अगर परिवार का सहयोग रहेगा तो जो चीजें आने वाली भी होंगी बहुत लेट आएंगी। इसमें यही है कि जितने परिवार वाले लोग जितना साथ में रहेंगे, अकेलापन कम रहेगा, तो काफी सही रहेगा इसमें।
1: बिल्कुल, तो चलते चलते डॉक्टर साहब आपका संदेश श्रोताओं के लिए।
0: जरूर, मेरा संदेश बहुत सरल है कि उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन याददाश्त और व्यवहार में लगातार गिरावट को केवल उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर परिवार में किसी बुजुर्ग को बार बार एक ही बात पूछना, हाल की घटनाओं को भूल जाना और रास्ता भूलना, पैसे के लेन देन में परेशानी होना, रोजमर्रा के काम करने की क्षमता में बदलाव दिखाई दे, तो उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय आप डॉक्टर को दिखाएं। समय पर पहचान होने से मरीज और परिवार को बीमारी को समझने, उपलब्ध उपचार और देखभाल योजना बनाने में मदद मिलेगी। और याद रखिए, भूलने को हमेशा उम्र का असर नहीं समझे,
1: हो सकता है कि ये अल्जाइमर हो।
0: जी,
1: डॉक्टर साहब, अल्जाइमर रोग से जुड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: मैंने अभी आपने इस संदेश से पहले सुना भेंटवार्ता, विषय था अल्जाइमर रोग की देखभाल में परिवार की भूमिका। वार्ताकार थे डॉक्टर सुनील कुमार गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज सोनभद्र, और उनसे बातचीत कर रहे थे सचिन कुमार वर्मा जी। तो बहनों, चलते हैं हम अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की तरफ। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर। बहनों, कहते हैं ना कि कम खाएंगे मगर शांति और सुकून से रहेंगे। शांति हम सभी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है, जो सबसे ज़रूरी है। जिस तरह सभी को भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार खुशी और सुरक्षित जीवन जीने के लिए शांति भी आवश्यकता होती है। बहनों, शांति का अर्थ केवल लड़ाई झगड़ा का न होना नहीं, बल्कि परिवार, समाज और देश में प्रेम, सहयोग, भाईचारा और आपसी समझ का होना भी जरूरी है। बहनों, हर साल 21 सितंबर यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को विश्व में शांति, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। बहनों, इस दिवस से यह सीख मिलता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। अगर किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उसे लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से हल करना चाहिए। बहनों, कहते हैं ना, बड़ी से बड़ी लड़ाई झगड़ा अगर आप प्रेम से, सुकून से बैठ के बात करिए तो वो ख़त्म हो जाता है।

बहनों अक्सर घर में देखते हैं कि कोई भी छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बात करना बंद कर देते हैं। और कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि झगड़ा होने लगता है। बहनों ऐसे समय में अगर हम थोड़ी समझदारी से काम लें, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल शांत रहें। कहते हैं ना, अगला बोलता है आप शांत रहिए तो झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं, और बिल्कुल शांत मन से बात करें तो समस्या आसानी से हल हो सकती है। बहनों इसलिए शांति का मतलब केवल लड़ाई झगड़ा ना होना नहीं, बल्कि हमारे मन में भी प्रेम, दया और सहनशीलता होना चाहिए। बहनों जरा सोचिए, अगर घर में हर समय लड़ाई झगड़ा या कोई भी घर में एक दूसरे से बात ना करे तो कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन बहनों अगर घर में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और उनकी परेशानी को समझते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो घर में खुशी बनी रहती है। यही बात हमारे समाज और हमारे देश पर भी लागू करता है। बहनों शांति बनाए रखने में हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरे की बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसे माफ़ करने की कोशिश करना चाहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहनों अक्सर गुस्से में उठाया हुआ कदम गलत होता है। बहनों गांधी जी ने भी हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। उनका मानना था कि हिंसा से हिंसा बढ़ती है, जबकि प्रेम और अहिंसा से लोगों के दिल जीतने जा सकते हैं। बहनों हमें उनके विचारों से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में शांति और अहिंसा को अपनाना चाहिए। बहनों शांति केवल सरकार या एक की जिम्मेदारी नहीं, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी से प्यार से बात करना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा कमजोर व्यक्ति की मदद करना चाहिए। कभी भी जाति, धर्म या अमीर गरीब किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बहनों अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि हम किसी को दुख नहीं देंगे और जहाँ तक हो सकेगा एक दूसरे की मदद ही करेंगे, तो हमारा देश, समाज अच्छा बन जाता है। इन्हीं छोटी छोटी आदतों से ही बड़ी शांति पैदा होती है। बहनों कहते हैं ना, जहाँ शांति है वहीं सच्ची खुशी। बहनों इन्हीं बातचीत के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

बहनों अब चलते हैं अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की ओर। लेकिन बहनों अभी आपने सुना इस प्यारे से गीत को। बहनों अब हम बात करेंगे नशा मुक्त परिवार, खुशहाल परिवार। बहनों आजकल हमारे समाज में नशे की समस्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। बहनों बिल्कुल आसानी से हर जगह नशीले पदार्थ अब तो मिल जा रहे हैं। शुरुआत में बहनों लोग इसे केवल शौक या दोस्ती के संगत में ले लेते हैं, लेकिन बहनों धीरे धीरे यही आदत सी बन जाती है। इसका असर बहनों केवल नशा करने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। बहनों अगर घर का कोई एक सदस्य भी नशे का आदि हो जाए तो पूरे घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है, है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नशे में व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, उसे पता भी नहीं होता कि उसे वो काम करना भी चाहिए या नहीं, या क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आपे में नहीं रहता। बहनों न किसी से वो कुछ भी बोल देता है, है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उससे बिना बात के झगड़ा भी कर लेता। अब रास्ते में ही देखिए, अगर कोई नशे में रहता है, अगर आप सीधे रास्ते से भी जा रहे हैं या कुछ हुआ तो देखिए वो बकबक बकबक करते जाता, अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता, तो ये बिल्कुल गलत है। बहनों इस नशे के चक्कर में कितना भी खर्च हो जाए, कितना भी पैसा घर का खर्च हो जाए, बिल्कुल उन्हें कुछ असर ही

नहीं पड़ता, लेकिन अगर घर की जरूरत के लिए वही पैसा मांगा जाए तो उन्हें भारी लगता है। बहनों, ये तो बिल्कुल गलत है कि बच्चों को कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या लेना है क्या नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं रहता। बस उनकी अपनी एक धुन रहती है किस चीज़ की, नशे की, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके आदी हो जाते हैं ना। बहनों, इसका असर घर के सभी सदस्य पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़रा सोचिए बहनों, किसी परिवार में पिता या कोई भी सदस्य रोज़ नशे में घर पे आते हैं और पूरे दिन के बच्चे उनका इंतज़ार करते हैं ना कि पापा ड्यूटी से आएंगे, चॉकलेट लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, लेकिन घर आने पर ही उनका गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि वो नशे में रहते हैं और बच्चों के सारे उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। बिना बात के बीवी से झगड़ा कर लेते हैं तो बच्चों के मन में भी एक डर पैदा हो जाता है ना, डर जाते हैं और बिल्कुल डर के कमरे में चले जाते हैं। घर में हंसी खुशी की जगह तनाव का माहौल बन जाता है और बहनों, धीरे धीरे घर के लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं।

बहनों, इसलिए यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि पूरे परिवार की समस्या है। बहनों, नशे से स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। शराब और तंबाकू जैसी चीजें शरीर को बिल्कुल अंदर से कमजोर कर देती हैं। इससे कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। बहनों, नशे का आदि व्यक्ति ठीक से काम भी नहीं कर सकता और उसकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। बहनों, कई बार नशे के कारण दुर्घटनाएं भी तो हो जाती है ना। सड़क पर वाहन चलाते समय नशा करना तो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान के लिए भी बिल्कुल खतरा बना रहता है। बहनों, नशे की आदत अक्सर गलत संगत से भी लगती है। कई बार दोस्तों ने मजाक मजाक में दे दिया और चलो आदत सी बन गई। बच्चों और युवाओं को नशे से बचाना बहुत जरूरी है। माता पिता को अपने बच्चों से प्यार से बात करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए। बच्चों, इसी बातचीत के साथ बहनों, धीरे धीरे अब हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अब अपने प्रीति को दीजिए इजाजत। बहनों, नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: जयपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ है हम सोनी निगम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ जिला में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल भेले। कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि अब भारत का अर्थव्यवस्था बॉटम फाइव से टॉप फाइव में आ गई बा।
1: अब भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम फाइव से टॉप फाइव में आ गई है। दुनिया के अंदर टॉप फाइव में भारत है। पहले नीचे से पांचवें नंबर पर भारत आता था, पहचान का संकट होता था, लेकिन अब नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह समाप्त करने की इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहा है और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है और उसकी परिणति हम सबके सामने है।
0: भारतीय जनता पार्टी की ओर से

0: आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीनो शामिल भेले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 साल पूरा कई रहल हवे। उनकर जतरा जनसेवा से देश सेवा का संकल्प और लगातार जनसेवा के भावना से प्रेरित रहल हवे। यही सेवा और सुशासन के सोच के साथ सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य के दिशा में काम कर रहा हो। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिया से लोगों के जिंदगी में बदलाव ले का कोशिश कैल जा रहा बा। इस मौका पर हमन के खास श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। सालन के इंतजार के बाद भइल भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही श्री राम का नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास का नया कहानी लिख रहल बा। राज्य और केंद्र सरकार के कोशिशन से अयोध्या में ढेरों विकास कार्य भइल हवे।
1: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, हर तरफ युगांतरकारी परिवर्तन हुए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रामनगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दूरसंचार विभाग सिम कार्ड के धोखाधड़ी से जारी कैल गईले दूरसंचार पहचानकर्ता लोगों के दुरुपयोग चाहे IMEI नंबरन के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहे के कहले हवे।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जापान एशियाई खेलिन में भारत आज पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीतलस। हिमांशु ढिल्लो रजत और रुद्रांक्ष पाटिल कांस्य अपने नाव कैले। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने आ रुद्रांक्ष पाटिल का टीम पुरुषन के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतलस। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिला वर्ग के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल कैलिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांक्ष पाटिल और सुचिका तारियाल के पदक जीतले पर बधाई देले हमें। मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकन में अगला 2 दिन ले मौसम शुष्क रहने का अनुमान जतवले हवे। विभाग इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का गिरावट भइले का आगम जतवले हवे। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार।
5: एक सौ 2.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। उससे पहले खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार देव कुमारी पुत्री रामकेश भारती निवासी ग्राम पिपरी सोनवानी थाना

प्रकार है। प्राप्ति स्थान ग्राम सिरसोती थाना बीजपुर। हुलिया 5 फीट 6 इंच लगभग। शरीर पर कपड़ा नहीं है। उम्र लगभग 35 वर्ष। जिस किसी से भी यह संबंधित हो कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई।

आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर में यानी शाम 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:50 पर फिल्म संगीत और शाम 7:05 पर लोक गीत का कार्यक्रम।

शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस और रात्रि 8 बजे और 8:30 पर गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत, रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत और पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का समय होगा रात्रि 9:15। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत और रात्रि 10 बजे आज आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। शाम के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: राम राम गौरी भौजी।
2: भोला भैया आपके भी राम राम। और सुनावे का हाल समाचार बा, सब कुशल मंगल बा ना?
1: बस कुशल मंगल है। इस समय जोन बाकी मौसम के कुछ परिवर्तन हो रहा है।
2: हाँ।
1: आज तो देखत रहे कि कोहरा भी जोन बाकी बहुत देखा मिलल।
2: हाँ।
1: इसने में सर्दी जुखाम के जोन असर है तो चल ही रहा है, उसे बच बचा के रहने की जरूरत है। साथ साथ जोन फसल में है मोटंजा जैसे सामा वगैरह, ओकर कटाई हो रहा है, ओकर जनबा की दवाई मढ़ाई भी के जुगत अपनावल जा रहा है। साथ साथ जनबा की खान पान के लिए जोन जागरूकता चल रहा है कि अगर पौष्टिक आहार आप लिए हैं, अब चूंकि जोन मोटे अनाज की बात की जाला वो बतावल जाला कि बड़ा पौष्टिक है। इसमें मकई के तो जानते हैं कि जनबा की भुट्टा बहुत चल रहा है, और इसमें जनबा की खीरा वगैरह भी जोन अपने खेत में फलत बा, ओकर स्वाद देखें तो कुछ मिली।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अब मौसम के हिसाब से जब चाहे मकई होके या सामा होके या बजड़ा होके तो इन लोग का कीमत तो है ये है। अब पुरनका पुरनियर हमन लोगों का खाए के पी के देखे लाल लाल रहे, तिउल भी तेज रहे, न बरवे झड़े सफेद होके, न ही दांत टूटे, मतलब मजबूत रहे
1: बिल्कुल। लेकिन हमें देखल जाला गौरी भौजी की बहुत लोग जो ऐसा अस्वस्थ समय तबियत खराब हो जाता वाला उनके।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
1: कभी कभार तो जैसे बड़ बुजुर्ग लोग हुआ।
2: हाँ।
1: चाहे अच्छा लोग भी ज्यादा बुखार आ जाता।
2: हाँ।
1: तो उनकर याददाश्ते चल जाता,
2: माने भुलाइना वाला सही मौके से याद दिलाना है। आज विश्व अल्जाइमर दिवस, भोला भैया हम पूछे के रहें कि आपके घरवा के बगलिया में

0: कांता बुआ है, तो एक दिन देखलें कि आप उनका रास्ता बतावत रहे।
1: वही तो बात है ना कि जैसे जौन रोज हर दिन जौन रास्ता में चलल है और पता चल कि ओके भूले के आदत पड़ जात है जौन बा की, तो कहीं न कहीं से यही के जौन बा की आज जौन अल्जाइमर दिवस आप बतावत हैं भुलाए वाला, तो यही लक्षण है कि लोगन के एकाएक जो है भूलने वाला बीमारी भी।
0: अरे भोला भैया, ये बहुत बेकार बीमारी है। हाँ। भूले वाली आदत से रोगी और ओकरे घरे वाले दोनों परेशान रहेला। और आज देखो ये विषय पर हम लोग बातों करत हैं जा कि विश्व अल्जाइमर दिवस जौन हर साल 21 सितंबर के मनावल जाला। भैया देखो, अल्जाइमर रोग एक गंभीर मस्तिष्क विकार है जेमन स्मृति हानि और भ्रम का स्थिति उत्पन्न होता है। यदि समय पर निदान और उपचार न कैल जाए तब व्यक्ति के सीखे सोचे और तर्क करे याद रखे के जो समस्या समाधान निर्णय लेवे और ध्यान केंद्रित करे में जैसा जो मानसिक क्षमता होला ना प्रतिकूल प्रभाव इस डाल सकत है। आज जैसे उनका दैनिक जीवन का जो गतिविधि है और वो सब जो उनका भावना है ऊपर नियंत्रण देखे प्रभावित हो सकत है। आई गंभीर बीमारी न केवल रोगी के बल्कि उनके पूरे परिवार के मित्र के भी प्रभावित करेला, माने सब परेशान रहेला ये चीज से कि अब उनको घर में याद ना रही, परनीय याद ना रही।
1: हाँ,
0: लोग लिख ली
1: कभी कभार तक महतारी होला।
0: हाँ।
1: और जो बाकी कही का की तुरका नाम हो अपन। हाँ। बिटिया के।
0: हाँ, हाँ।
1: तो शादी हो गई हो।
0: हाँ।
1: या ऐसा करके मन भी जोन बाकी कुछ लोग के सुनने के मिला।
0: हाँ, कुछ पढ़ा लिखा रहे ना तो लिख के रखे।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: कि हमारे मारे घर बा या हमके दवाई खाए के बाद तो चिपकावल जला दिवाली वाली पे ताकि उनके मने ये सब पढ़े पढ़े तो उनको होश आवे।
1: अब एक साथ साथ देखिए गौरव भाई, आज जोन बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है।
0: हाँ, हाँ।
1: और निश्चित रूप से सकुशल रहे के खातिर जोन बाकी शांति भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एकाग्रता में रह करके और एक दूसरे से मिलजुल करके शांतिपूर्वक रहे बच करके। हाँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस देखा भोला भैया प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन मनावल जाला।
1: सितम्बर
0: हाँ 21 सितम्बर एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित कल गए ताकि पूरी दुनिया में शांति के आदर्श के बढ़ावा दिया जा सके और हिंसा युद्ध संघर्ष के रोके की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मजबूत कल जा सके। एक उद्देश्य ही है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर शांति अहिंसा के बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से जोन बाकी इससे पहले भी आप जोन बातचीत करते रहे कि अल्जाइमर दिवस के बारे में।
0: हाँ।
1: और एक खातिर ये तो बहुत मतलब जगत बहन मन में ऐसा कि आखिर का कारण हो के तरीके का एक लक्षण हो कैसे का उपचार कर जा सकला।
0: हाँ, हाँ।
1: एक जानब बहुत जरूरी है।
0: हाँ।
1: तो ऐसने में डॉक्टर अमृत राय जो चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय सोनभद्र से जो बाकी बात बत कही हुई हो सुरसरी द्विवेदी जी के।
0: हाँ, हाँ।
1: और एक जानब बहुत जरूरी है ऐसे कि देखा और तो हम लोग जो बाकी धीरे धीरे करके परहेज कर लो जी।
0: हाँ।
1: लेकिन बीमारी से बचब बड़ी मुश्किल हो बिना जानकारी के। तो का कहते हैं आप?
0: तो आपको इशारा है कि हम लोग ये जानकारी सुना है।
2: साथियों, किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना उसकी ऊंची कद काठी से नहीं बल्कि उस स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क के होने से समझा जाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना उसके कार्यों के प्रति स्फूर्ति विवेक इत्यादि के साथ साथ स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति पर भी निर्भर करता है। किंतु कभी कभी स्मरण शक्ति में छिड़ता आने लगती है, जैसे अपनी दिनचर्या में किसी चीज को भूल जाना। यदि यह चीजें प्राथमिक स्तर पर हैं, तो इसे नजरअंदाज किया जाता है और लोग यह हंस के टाल देते हैं कि बड़े बूढ़ों में होता है कि वो चीजों को भूल जाएं। आजकल के बच्चे भी ऐसा करने लगे हैं कि चीजों को रख के भूल जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी घर से निकलते समय व्यक्ति भूल जाता है कि किस कार्य से हम निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में निरुद्देश्य वह भटकता रहता है, गलत जगह चला जाता है और गलत परिणाम तब होता है जब वह स्वयं को भूल जाता है। वह कौन है, कहां से निकला है और कहां को जाना है। स्थिति इतनी गंभीर ना हो इसके लिए एक वैश्विक दिवस का आयोजन किया गया है जिस दिवस को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समय रहते उसके याददाश्त में होने वाली कमी के प्रति जागरूक कराया जा सके। आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला संयुक्त चिकित्सालय लोढ़ी सोनभद्र से डॉक्टर अमृत राय जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार मैम।
2: डॉक्टर साहब आज हम अल्जाइमर दिवस पर चर्चा करने के लिए शामिल हैं।
3: मैम ये एक बीमारी होती है, इसे हम अल्जाइमर डिमेंशिया कहते हैं। प्रायः देखा गया है कि ये जो अल्जाइमर डिमेंशिया होता है यह ओल्ड एज में होता है, 50 ईयर एज के आदि होता है।
2: जी बिल्कुल।
3: और जनरली यह फीमेल में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। अब एक्चुअली इसके जो लक्षण होते हैं, प्रायः जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
2: जी, जी।
3: तो जो पहला लक्षण जिसे हम पहचान सकते हैं घरों में कि इनको लग रहा है अल्जाइमर का कुछ लक्षण जैसे दिखा, उसे हम अंदाज लग जाएगा कि हाँ इनको लग रहा है अल्जाइमर हो रहा है।
2: जी।
3: तो उसको सबसे जो पहला लक्षण ये है कि वो ओल्ड एज का पर्सन पास्ट की चीज़ को तो याद रखता है, उसे ये पता है कि उसे कितने बेटे हैं, है ना, उसका कब मैरिज एनिवर्सरी है, इस तरह की पास्ट की चीज़ को तो याद रखेगा, लेकिन प्रेजेंट की चीज़ को भूलने लगेगा। जैसे आज उसने खाना खाया नहीं खाया, आज उससे अभी थोड़ी देर पहले कौन मिलने आया था। यदि इस तरह के सिम्टम मिलने लगे तो ये इसका फर्स्ट साइन माना जाता है अल्जाइमर डिजीज का। यदि इसे इसी पे क्योर करा जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी। यदि इसे हम नज़र, अब जैसा अभी आपने कहा कि इसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, तो यही चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। जब ये आगे बढ़ती हैं तो उसमें इसके तीन चार फीचर होते हैं। एक तो ये मैंने बता दिया है, तो शुरुआती के हो गए, यदि हम इसको ट्रीटमेंट करें तो थोड़ा इसमें राहत मिलेगी, नहीं करें तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मल जो आगे बढ़ती जाती है, हम लोग कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक बोलते हैं नॉमिनल एफासिया, शब्द होता है मेडिकल टर्म नॉमिनल एफासिया। इसमें क्या होता है कि आदमी कोई चीज़ सही बोलना चाहेगा लेकिन उसका जो उच्चारण होता है, जो बात होती है, वो पूरा बोल नहीं पाएगा ना। जैसे बोला गया कोई भी काम, जैसे उसको पेन उठाना है तो पेन को ना बोल करके बोले वो सामान उठा दो, मतलब इस तरह से उसको नॉमिनल एफासिया होगी। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्रम होगा। एक होता है एप्राक्सिया। एप्राक्सिया में हम उसे कहेंगे कोई इमेज ड्रा करिए, तो जैसे अब सही तो नहीं बोल पा रहा है, वो सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे क्या आप बोलना चाह रहे हैं, हम सही नहीं, आप लिख के बताइए क्या बोलना चाहते हैं। तो वो जो है एप्राक्सिया जो शब्द था, वो जो है इमेज को सही ड्रा नहीं कर पाएगा।
2: अच्छा, मतलब जो यदि वो चाहे
3: जी
2: आकृति के आधार हाँ, पर या शब्दों को लिख करके अपनी बातों को बयां करें
3: तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तो वो सही शब्द बोल नहीं पाए, दूसरा यदि हम सोचे कि सर लिख के बता दीजिए क्या है, तो वो सही शब्द ड्रा नहीं कर पाए। तीसरा होता है एग्नोसिया। एग्नोसिया एक टर्म होता है, एप्राक्सिया जो बोलते हैं हम लोग, एफासिया एप्राक्सिया एग्नोसिया। तो एफासिया में वो सही शब्द नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, एप्राक्सिया में वो इमेज नहीं ड्रा कर पा रहे हैं, और एग्नोसिया में यदि हम उन्हें कोई चीज जैसे कि हम कोई शेप वो क्लियर नहीं बता, जैसे हम उन्हें बनाना दें कि ये क्या है, तो वो बनाना ना समझ को समझेंगे इसको ग्रेप्स है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते,
2: मतलब चीजों को पहचानना
3: मुश्किल। मेन इसका नाम ही इस बीमारी का मैम अल्जाइमर डिमेंशिया ना, चीजें पहचान नहीं पाना, याददाश्त का भूल जाना। ठीक। और धीरे धीरे एक और हम टर्म बोलते हैं, उसको कहते हैं कैपग्रास सिंड्रोम बोलते हैं। कैपग्रास सिंड्रोम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए उनका ब्रदर आया उनसे मिलने, माने उनका ब्रदर ही आया मिलने, तो लोग कहेंगे अरे आपके भाई आए हैं मिलने, लेकिन उन्होंने नहीं नहीं ये मेरा भाई नहीं है।
2: अच्छा,
3: ये मेरा भाई है ही नहीं है,
2: मतलब अपने बहुत खास लोगों को भी पहचानने में
3: मुश्किल होना। तो ये जो है इनके लक्षण होते हैं इस बीमारी के, मतलब पहले तो शुरुआत के फर्स्ट साइन हो गए, यदि हम उसको उसी पे रोक देते तो शायद सुधार कुछ हो जाता, लेकिन हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, हंसी मजाक में उड़ा दिया कि अरे पास्ट की चीजें तो इनको याद है, आज की चीजें इनको याद नहीं, अभी कह रहे हैं अभी तो हमने खाना ही नहीं खाया, अभी खाना खा के उठे बोलते हमने तो खाना ही नहीं खाया, तो ये तो प्रेजेंट चीजें वो भूल जा रहे हैं। अब हमने उसको इग्नोर कर दिया, अब हमने इसको इग्नोर कर दिया तो वो चीजें आगे बढ़ गई, तो वही एफासिया एप्राक्सिया और एग्नोसिया में कन्वर्ट हो गई, कैपग्रास सिंड्रोम में भी कन्वर्ट।
2: जी बिल्कुल, आपने बड़े ही तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि शुरुआती दौर में जो लक्षण मिलते हैं यदि हम उस पर कोशिश करें, डॉक्टर से संपर्क करें, तो इसे यहाँ पे ही इस बीमारी को रोका जा सकता है, वनस्पति इसके कि वह परिचितों को भी पहचानने में मुश्किल ना है। डॉक्टर साहब वैसे तो यह इस प्रकार की समस्या उम्र के बाद आती थी, किंतु आज
4: युवाओं में भी ऐसी परेशानियां देखने को मिलने लगी हैं, तो क्या वजह है इसका?
3: उसमें जैसे कि ये दो, एक तो इरिवर्सिबल हो गई अल्जाइमर वाली, एक रिवर्सिबल डिमेंशिया भी होती, इसी से मिलती जुलती होती है। तो जैसे अल्कोहलिक हैं तो या विटामिन बी1 की

0: कमी है, ऐसे लोगों में रिवर्सिबल डिमेंशिया होती है, वो भी इसी तरह से मिलती जुलती है, लेकिन यदि इसको हम जो है विटामिन बी1 की कमी को दूर कर दें तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और इसके जो बेसिक कारण है, जो आपने पूछा कि इसके कारण क्या हो रहे हैं ना, ये क्यों होता है, बेसिक कारण क्या है, तो बेसिक कारण अल्जाइमर डिमेंशिया का है मैम एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक हमारे ब्रेन में केमिकल होता है, उसका नाम होता है एसिटल कोलिन। उस एसिटल कोलिन के लेवल कम हो जाना, क्योंकि ये क्या है कि अल्जाइमर डिजीज एक डिजेनरेटिव डिजीज है ना, ब्रेन के टिश्यू जब डिजेनरेट करने लगते हैं एज के हिसाब से, तो ये ब्रेन का टिश्यू डिजेनरेट करने लगेगा, ये जो एसिटल कोलिन बनता है ये ब्रेन के टिश्यू से ही बनता है, तो जब ब्रेन का टिश्यू ही डिजेनरेट करने लगेगा तो एसिटल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा, और एसिटल कोलिन के लेवल के कम होने की वजह से ये बीमारी हमें शुरू।
1: कोशिकाओं का स्वस्थ होना जरूर आवश्यक है,
0: इसीलिए बोलते हैं कि ओल्ड एज में हेल्दी एक्सरसाइज, योगा, एक अपना जो ग्रुप है इस तरह के रहे तो इन्वायरमेंट सही रहेगा, और यदि ये धीरे धीरे होने लगता है जिसके कारण से एसिटल कोलिन का लेवल कम होने लगता है जिसके कारण ये बीमारी शुरू हो जाती है
1: जी। अब डॉक्टर साहब, परेशानियां आना तो किसी के रोके रुकता नहीं है, किंतु ये समस्याएं आई आपकी बातों से, यदि लोग अपने में पहचान बना पा रहे हैं, इस समस्याओं का पहचान पा रहे हैं, तो निदान हेतु, उपचार हेतु किस तरह से कहां जाए
0: मैम? निदान हेतु इसके लिए तो खैर न्यूरोफिजिशियन होते हैं, है ना, बेस्ट तो न्यूरोफिजिशियन होते हैं, फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं तो, और इसमें सबसे ज़्यादा है एक तो न्यूरोफिजिशियन, और फिजिशियन के साथ साथ में फेमिलियर सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया है अल्जाइमर डिजीज में कि एक्चुअली इसमें पुअर हाइजीन हो जाती है, वो खुद ही इनको याद नहीं रहता, उनको खुद ही कुछ याद नहीं रहता, कब बाथरूम किए कब नहीं किए, कपड़े में कर दिए कपड़े भी खोल दिए, कुछ पता नहीं उनको रहता, तो इसमें जो पुअर हाइजीन की वजह से सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने लगता है इनको, और एक ये डेथ का इनका बड़ा कारण बनता है, इसीलिए इनको जो आपने पूछा कहाँ दिखाया जाए, तो इसके लिए फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, साइकेट्रिक से भी थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में चूंकि ये मैंने पहले ही बता दिया अल्जाइमर इरिवर्सिबल डिमेंशिया है, तो ब्रेन ही टिश्यू ही डिजेनरेट कर गया, तो जब डिजेनरेट कर गया और ओल्ड एज में तो ये रिजेनरेट करने की संभावना कम है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इनका केयर, जो कि फेमिलियर केयर मिले, उन्हें एक सपोर्ट मिले, तो शायद इससे कुछ उनको ठीक रहे। जैसे अभी अपनों को पहचानना बंद कर दिया, पुअर हाइजीन के कारण और भी इन्फेक्शन होने लगे, अभी तो ये सब समस्याएं थी लेकिन पुअर हाइजीन के कारण ढेर सारी समस्याएं होने लगती हैं इनको, तो इस तरह से और ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो उससे उनको काफ़ी ठीक रहेगा। और बाकी इसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह चलती है, ये हम सभी को एक संदेश देना चाहेंगे, खुद भी हम सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे कि घर में जो भी वृद्ध परिजन हैं तो हम उनकी देखभाल करें, और इन चीज़ों को जो अभी हमने क्लिनिकल फीचर बताया कि शुरुआती में कि पास्ट की चीज़ों को याद रखना, प्रेजेंट की चीज़ों को भूल जाना, सही शब्दों का उच्चारण न कर पाना, कुछ समय चीज़ों को सही से हम न सेफ न समझ पाना, यदि इस तरह की समस्याएं आने लगी हैं तो हमें उनका सबसे पहले तो मोरल सपोर्ट करें
1: जी।
0: सबसे पहले उनका मोरल सपोर्ट करें, यदि हमें लगता है कि बीमारी बढ़ती जाती है तब हम किसी नज़दीकी चिकित्सक से दिखाएं, उसका MRI कराएं, और उसके बाद तब फिर धीरे धीरे उसको जो उसका उचित उपचार है न्यूरोफिजिशियन के यहाँ जा करके तब फिर उसको हम।
1: बहुत अच्छी बात है, और इस दिवस पर इस तरह की चर्चा होना हमारे श्रोताओं के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि जिस चीज को हम एक व्यावहारिक समस्या समझ के नजरअंदाज कर रहे थे, भविष्य में उसे एक गंभीर बीमारी बनने से रोक सकते हैं, और इसे रोक पाना ही इस दिवस की सच्ची सार्थकता होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: गौरी भौजी,
2: हाँ बोला भैया। अल्जाइमर रोग का लक्षण उपचार डॉक्टर अमृत राय चिकित्सा अधिकारी जो जिला चिकित्सा सोनभद्र से रहना अपन जन सुश्री द्विवेदी बहन से बातचीत भइल तो इतना बढ़िया जानकारी हम लोग सुन ली है जा, साथ में संदेश भी सुन ली है जा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक

0: धन्यवाद बना था एक मन साइन के साथ।
1: तो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये बात बत कहे के अंदर ये अलग
0: हाँ
1: कि जहाँ मन मनसान ना हो चाहे तो या और प्रसन्न ना रहे व्यक्ति तो
0: हाँ
1: उससे जोन बाकी और बीमारी फैले के संभावना होला।
0: हाँ
1: तो अब मन मनसान सुन ले जाए और
0: बिल्कुल
1: हम लोग भी प्रसन्नचित होकर फिर आगे बात बत कहे कर जाए।
0: कहल जाए बिल्कुल। तो देरी का है कि इमामदी अहमद के गावल एक कहरवा है सुनल जाए।
1: सुना।

0: अरे भौजी,
1: मीको लागे राजा जी के गांव।
0: कितना बढ़िया मनमनसान और निक और बढ़िया लगी जब जुनबा कि हम लोग खेत खलिहान में फसल लहलहाई।
1: लहलहाई और
0: हाँ
1: हमेशा हम लोग का मंशा रहेला कि लागत थोड़ा कम आवे और उत्पादन ज्यादा होके। हाँ
0: बिल्कुल, ते के खातिर सबसे पहले तो हम लोग खेत के समतलीकरण करावे के होखी, और साथ साथ अगर हमें मेड़बंदी हो जाए तो वो और कारगर जो
1: सोने पर
0: हमारे लोग
1: सुहागा।
0: बिल्कुल, चूंकि अपने खेत के पानी खेत में रही और नमी जोन बाकी बनल रही, और उनमें अगर जोन बाकी जो भी अनाज या साग सब्जी उत्पादन करे खातिर हम लोग लगावल जाई, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होखी। और खेत समतल करे के से ई होला कि समान सिंचाई हुई, एक जगह पानी डाला तो बहुत थोड़ी ही सा पानी में पूरा यहाँ से वहाँ फैल जाए, और उबड़ खाबड़ रही तो ज्यादा पानी डाले के पड़ी,
1: बिल्कुल
0: और वहीं
1: बिल्कुल।
0: उर्वरक के समान वितरण भी हो जाए, और
1: खाद
0: एक
1: का बीज का सब
0: बिल्कुल
1: सही
0: बिल्कुल
1: से।
0: बिल्कुल, और एक समान बुआई भी कल जा सकल, और कम लागत भी लगी, और साथ साथ अगर जन बाकी हम लोग मेड़बंदी अगर कर दें तो मिट्टी के संरक्षण होगी हम लोग के, और साथ साथ नमी भी बनल रही, और खाद के ठहराव हमें पड़ी, और सीमा भी निर्धारित रही, यारी पड़ोस वाले नहीं कहीं कि हमारे वहां तक बा है, और जन बाकी अपन जन बाकी मेड़ बनल रही
1: दो
0: तो वहीं
1: इंची चार
0: तक
1: इंची का कोनो बहस
0: हाँ,
1: बाजी ना रह
0: ओकर
1: जाए।
0: लड़ाई न रह जाए, तो हम लोग के बात बात कही अभी और होत रही, लेकिन आज इसने जन बाकी टमाटर के फसल में सामी के कृषि कार्य का कुछ हो सकला, ये विषय पे बातचीत करे खातिर संतोष कुमार कुशवाहा भैया से मुलाकात हो गई रहे, तो बात हुई हो अगर कहा तो सार्वजनिक करी हम
1: बिल्कुल।
0: तो सुना।
2: श्रोताओं, खेती किसानी करने के लिए व्यक्ति को एक तो जो है कि जीवांश की मात्रा बनी रहे इसके लिए निरंतर व्यक्ति चिंतनशील रहता है, जिस जैविक खाद के लिए ज़्यादा चर्चा चलता है उसमें कई प्रकार के, या तो बहुत पानी पानी होए तब भी जो है कि पोषक तत्व तो बनाए रहता है जिससे कि फसल बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, और दूसरी बात अगर पानी ना भी बरसे तभी भी उसमें जो है कि थोड़ा नमीपन बनाए रहता है जिससे कि फसल चलते रहते हैं। दोनों स्थिति में आज लोग जो पशुपालन किए हैं वो तो गोबर खाद डाल ही रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः जो मुर्गी पालन वगैरह किए हैं उसका बीट जो डाल रहे हैं वो बहुत कारगर है। आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कादल में हैं, और यहाँ हमारी मुलाकात संतोष कुमार कुशवाहा जी से हो रही है। आप साग सब्जी की खेती बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, वैसे थोड़ा मोड़ा सभी फसल बोते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन जो बिजनेस के तौर पर बात की जाए तो मुर्गी पालन और जो है कि साग सब्जी का उत्पादन में विशेष रुचि लेते हैं, तो आज संतोष कुमार कुशवाहा जी से बातचीत करते हैं कि क्या जुगत अपनाते हैं कि अच्छा खेती कर पाते हैं। संतोष जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन से साग सब्जी उत्पादन किए हैं इस समय आप?
3: सर आपको पहले नमस्कार। सर
2: जी जी धन्यवाद।
3: हमने तो पहले बैगन लगाए रखे हैं सर, जो कि अभी निकल रहा है,
2: अच्छा,
3: और अगस्त में गोभी भी लगाए हैं। ये हाइब्रिड प्रजाति है।
2: अच्छा,
3: हाँ, हाइब्रिड में सिजेंटा 1522 है, जो कि 8 से 10 अगस्त को लगा हुआ है।
2: अच्छा,
3: हाँ,
2: ये बीच में पानी लगातार चल रहा है उससे कोई नुकसान?
3: इससे हल्का फुल्का तो प्रभावित हुआ है सर, इसलिए कि इस बार लगातार बारिश कभी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो कुछ तो प्रभाव डाला है। फिर भी उसमें नाली खींचा हुआ था पानी निकलने के लिए। हाँ, लेकिन प्रतिदिन एकदम पानी लगने के कारण से कुछ कुछ तो प्रभावित हुआ है।
2: ज़्यादा नमी नमी के चलते।
3: हाँ,
2: और कौन सा खेती करना चाह रहे हैं आगे?
3: और इसके बाद अब टमाटर का तैयारी चल रहा है।
2: अच्छा,
3: हाँ
2: तो नर्सरी कर दिए हैं
3: हाँ
2: आप?
3: टमाटर का नर्सरी अभी यही कल ही मान के चलिए जमा हुआ है।
2: अच्छा, मतलब ये शुरुआती सितंबर वगैरह
3: हाँ
2: में जो है कर दिए
3: हाँ
2: हैं।
3: हाँ
2: तो इसमें टमाटर के अभी रोपाई कब तक करने लगेंगे?
3: एक माह में इसका नर्सरी लग जाएगा।
2: अच्छा, मैंने सितंबर खत्म होते
3: हाँ हाँ
2: होते।
3: ये 10 तारीख को नर्सरी निकल चुका है पूर्ण रूप से। हाँ
2: तो इसमें टमाटर लगाने के लिए खेती की तैयारी वगैरह कैसे करते हैं?
3: पहले तो इसमें हम लोग देखिए, हम लोग तो मुर्गी का पालन किए हैं, पहले
2: अच्छा,
3: तो इसका बीट हम लोग डाल देते हैं खेत में।
2: मुर्गी पालन आप भी किए हैं?
3: जी जी
2: अच्छा,
3: हाँ
2: कितना डाले हैं मुर्गी?
3: अभी तो वर्तमान में हमारे पास लगभग 4500 पड़ा हुआ है।
2: अच्छा,
3: हाँ
2: तो वो तो सीधे बेच करके आप मुनाफा कमाते ही हैं,
3: हाँ
2: लेकिन उसका बीट के क्या करते हैं?
3: बीट ये जो सब्जी का काम होता है इसमें डाला जाता है।
2: अच्छा,
3: हाँ
2: पहले डाल देंगे
3: हाँ पहले खेत में डाल देंगे,
2: फिर?
3: इसके बाद जुताई होगा। हाँ, जुताई करने के बाद जब फसल लगाना होगा तो मेड़ वगैरह तैयार करके उसमें लग जाएगा।
2: क्या बात, वो फायदेमंद है।
3: फायदेमंद है, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है पौधा।
2: हाँ,
3: इसमें यूरिया डीएपी के उतना कोई जरूरत नहीं है।
2: अच्छा, हाँ, चाहे तो इसी उत्पादन हो जाएगा।
3: हाँ, इसी प्रकार से उत्पादन हो जाएगा उसमें। एकदम नहीं के बराबर, एकदम लास्ट स्टेज में शायद अगर फल वल छोटा होने लगे एकदम लास्ट समय में, तो हल्का फुल्का रासायनिक खाद के उपयोग करना पड़ सकता है, नहीं तो ये भी कोई जरूरी नहीं है।
2: कोई जरूरी नहीं
3: है।
2: तो बहुत अच्छा युक्ति है कि मतलब आम के आम गुठली के दाम, एक तो सीधे मुर्गी बेच करके आप लाभ ले रहे हैं,
3: हाँ,
2: और उसके बीट से जो है कि आप खाद बना ले रहे हैं।
3: हाँ, बीट से तो
2: वैसे आपके अगल बगल जो मक्का लगे हुए हैं,
3: हाँ,
2: वो कितना बढ़िया मतलब दिख रहा है, यही बीट के ही चलते हैं।
3: हाँ, बीट के चलते हैं।
2: हाँ,
3: हाँ, इसमें यूरिया तो पड़ा ही नहीं था।
2: हाँ,
3: अभी जब इसका जब भुआ जोखा जब लेने लगा उस समय बहुत हल्का मात्रा में दिया गया है।
2: अच्छा।
3: हाँ, नहीं शुरू में डीएपी जैम ये जो होता है यूरिया वगैरह रासायनिक खाद, इसका उपयोग हुआ ही नहीं है।
2: क्या बात है। तो ये टमाटर के लिए खेती कई बार जुताई करेंगे?
3: टमाटर अभी तो ये बरसात के समय है। हाँ, देखिए अब कई बार जुताई हो पाता जैसा मौसम रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि पांच बार से छह बार तक जुताई हो ही जाता है, उससे अधिक होता है नीचे के बात नहीं है,
2: ताकि एकदम भुरभुरा हो जाए।
3: हाँ,
2: हाँ, फिर कैसे लगाएंगे इसको?
3: फिर इसमें मेढ़ बनेगा नाली टाइप से।
2: अच्छा।
3: हाँ, उसके मेढ़ पे लगेगा।
2: मेढ़ पे लगेगा।
3: हाँ,
2: नाली में पानी रहेगा या ऊपर जो है कि?
3: हाँ, साइड में रहेगा।
2: साइड में रहेगा ताकि नमी खाली मिले,
3: नमी मिले,
2: सीधे पानी में ना पड़े।
3: सीधे पानी में ना पड़े।
2: तो इसका कितना दूरी पर नाली बनेगा?
3: इसका हम लोग करीब 3 फीट से ऊपर दूरी पे नाली बनाते हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ,
2: और ये
3: लगाने का जो दूरी होता है, हाँ, ये लगभग 2.5 फीट से 3 फीट इसका भी दूरी रहता है।
2: अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसको भी ऊपर चढ़ाते हैं कि
3: नहीं? ऊपर नहीं, जो मेड़ टाइप से रहता है उसी पे होता है,
2: उसी पर हो जाएगा।
3: हाँ, पानी सिर्फ नाली में ही जाएगा सिर्फ।
2: हाँ, हाँ।
3: और जब तक टमाटर फल फूल पर आएगा तब तक तो बारिश बंद ही हो जाएगा।
2: बारिश बंद हो जाएगा।
3: हाँ
2: जी, बरसात वाला रहता चढ़ाते।
3: हाँ, बरसात वाला रहता तो चढ़ाया जाता।
2: हाँ, तो इसमें और क्या देख रेख करना पड़ता है?
3: इसमें वही फुफूंदनाशक वगैरह का देख रेख करना होता है।
2: अच्छा। हाँ, उसको डालते हैं।
3: हाँ,
2: तो शुरुआती में जैसे कि आप लगा दिए।
3: हाँ,
2: और फिर निराई गुड़ाई भी?
3: निराई गुड़ाई में आजकल तो दवा भी आ रहा है।
2: हाँ,
3: दवा स्प्रे कर देंगे तो घास तो होना ही नहीं है,
2: होना ही नहीं।
3: लेकिन फिर भी निराई गुड़ाई चाहिए।
2: हाँ,
3: इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन वगैरह मिल जाता है।
2: जी जी।
3: हाँ,
2: तो भुरभुरापन रहेगा तो भाई।
3: हाँ,
2: अच्छा है,
3: और अच्छा है ना।
2: तो चूंकि आज बहुत सारे लोग डाल रहे हैं यूरिया डीएपी, जिसकी वजह से साग सब्जी के भी कम टिकाऊ रहता है।
3: हाँ,
2: देखते हैं कि दूसरा दिन तीसरा दिन में जो है कि खराब होने लगता है।
3: हाँ,
2: तो और आप जो उत्पादन करते हैं उसका क्या स्थिति है?
3: नहीं, ये तो टिकाऊ होता है ना।
2: टिकाऊ होता है।
3: टिकाऊ होता है।
2: हाँ, मतलब ये जैविक खाद का ही असर है।
3: हाँ, जैविक खाद का असर है।
2: हाँ,
3: और वो देखिए जो रासायनिक खाद डालेंगे उन लोग के 8 दिन 10 दिन में उसमें प्रयोग कर

0: पड़ेगा। हाँ
1: अच्छा
0: नहीं, जो फलदार सब्जी है ना उनका होगा ही नहीं,
1: अच्छा ये बात
0: अगर
1: है।
0: 8 दिन 10 दिन में अगर यूरिया का स्प्रे ना करें वो,
1: हाँ।
0: तो उनका होगा ही नहीं।
1: अच्छा और आपका?
0: और हमको तो यूरिया का स्प्रे करने का वो जरूरत ही नहीं है।
1: अच्छा इसको डाल दिया है तो नहीं जरूरत
0: हाँ
1: है।
0: शायद वही लास्ट में जो बताए हम, लास्ट में पड़ सकता है
1: वो
0: जैसे
1: तो भाई
0: पौधा
1: हाँ
0: पुराना होने लगा तो।
1: हाँ तो ये चीज़ें हैं।
0: हाँ
1: रेडियो के माध्यम से चूंकि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो चलते चलाते उनको का नसीहत देना चाहिए, खेत के ताकत बना रहे इसके लिए।
0: अब तो सभी लोग के पास देखिए फार्म वगैरह तो नहीं है, लेकिन अपने खेत में गोबर का प्रयोग करें।
1: हाँ मवेशी तो रखेंगे तभी किसान है ना।
0: हाँ मवेशी रखें, कुछ ना
1: हाँ
0: कुछ रखें,
1: जी
0: और कहीं शहर वगैरह में खटाल होता है
1: जी
0: वहां
1: जी
0: पे गोबर सब पड़ा होता है, लोग हटवाना चाहते हैं, वहां से ला करके लोग खेत में प्रयोग करें, इससे किसानों का फायदा ही होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपके यहाँ से अगर बिट लेना चाहें तो नहीं मिल पाएगा?
0: मिल जाएगा, हमारे यहाँ से भी मिल जाएगा।
1: अच्छा
0: हमारे
1: अच्छा
0: यहाँ तो बहुत लंबा फार्म है, टोटल
1: हाँ
0: 25,000 का फार्म है, तो हम कितना प्रयोग करेंगे।
1: बिल्कुल
0: फिर भी
1: बिल्कुल।
0: कुछ किसान भाई ले जाते हैं अभी भी हमारे पास से, जिसको 2 बोरा 4 बोरा जरूरत है, जब भी बोल देते हैं लोगों को, सबको दे देते हैं, हेल्प करते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: ये तो बहुत अच्छी बात है भाई,
0: हाँ
1: करना भी चाहिए।
0: हाँ
1: और इसमें जो है कि फलत कब लगने लगेगा, कितना दिन में टमाटर में
0: फल
1: लगाने के
0: तो
1: बाद?
0: लगाने के बाद वही मान के चलिए 45 दिन में पौधा अच्छा ग्रोथ रहेगा ना, तो 45 दिन में उसका फल पकड़ने लग जाएगा।
1: बहुत टमाटर में फूल झड़ने भी लगता है, तो उसके लिए का जो
0: उसके
1: मतलब?
0: लिए दवा आती है ना।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ हालांकि हम लोग का तो नहीं झड़ता है,
1: नहीं झड़ता
0: नहीं
1: है।
0: झड़ता है,
1: अच्छा
0: लेकिन
1: अच्छा
0: उसमें दवा वगैरह चलता है
1: हाँ, जैसे
0: जैसे।
1: मान लीजिए झड़ने का कंडीशन हो तो उसमें
0: हाँ
1: दवा वगैरह छिड़के। टमाटर
0: हाँ
1: में भी जो है कि वो रोग लगते
0: हाँ
1: हैं,
0: रोग लगता है।
1: तो उसके लिए क्या जरूरत अपनाते हैं?
0: पहले तो टमाटर लगने के 15-20 दिन बाद ही हमें प्लांटोमाइसिन का छिड़काव होना चाहिए, करना
1: अच्छा
0: चाहिए,
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: कीटनाशक ले लेना चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी का कीटनाशक हो,
1: हाँ।
0: कीटनाशक ले लेना चाहिए, और प्लांटोमाइसिन का टमाटर में एकदम पूर्ण रूप से उसका छिड़काव होना ही चाहिए।
1: जी जी जी जी
0: हाँ
1: अच्छा, तो उससे जो है कि अच्छा
0: पौधा
1: अच्छा
0: में कली बहुत अच्छे से निकलता है और उसका जो होता है टिकाऊ होता है।
1: अच्छा, जितने काज करेगा उतना ही जो है कि
0: हाँ फल,
1: अधिक फलत लगेगा।
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: और बहुत से किसान भाइयों तो नहीं जान पाते हैं प्लांटोमाइसिन के, जैसे देखिए छोटा मोटा सब किसान है हमारे एरिया में, तो सभी लोग के तो जानकारी में नहीं होता है, लेकिन प्लांटोमाइसिन दवाइयाँ तो बहुत प्रकार के बनी है, लेकिन
1: जी जी
0: प्लांटोमाइसिन छिड़कना बहुत अनिवार्य है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो बहुत अच्छी बातें चल रही थी, लेकिन समय है थोड़ा, तो चलते चलाते किसान भाइयों से क्या करना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों के हम यही बोलेंगे कि भाई जो भी करें, आज के समय में तो बहुत काफ़ी लागत लगता है, अपना समय देखते हुए अच्छे प्रकार से उसमें लागत लगाना है तो ढंग से करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो श्रोताओं देखें, ये सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कादल से संतोष कुमार कुशवाहा जी थे, आपसे बातचीत हो रही थी साग सब्जी उत्पादन करने में। हम लोग को जैविक खाद का प्रयोग कितना लाभकारी है, क्योंकि बचत भी करता है, क्योंकि जो रासायनिक खाद दवा है थोड़ा महंगे रेट में मिलते हैं, और अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनका सीधे पशुपालन गाय वगैरह से तो दूध निकाल कर बिक्री कर सकते हैं, खाएंगे, बकरी सीधे बेच करके फिर, लेकिन इसके बावजूद भी लेड़ी उसका बहुत काम आएगा। मुर्गी पालन की बात है, मुर्गी को बेच भी दीजिए, सीधे पैसा मिलेगा, और उसके जो है कि बीट से आपके खाद बनेंगे। इस प्रकार काम एक लाभ अनेक हैं, और इससे आप जुड़ करके करेंगे तो जो है कि आपका कहीं से भी खर्च नहीं आएगा, बल्कि मुनाफा ही मुनाफा होगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी भौजी
0: बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुशवाहा भैया का और आपका भी भोला भैया, और हम तो कहते हैं कि आज का बाजार भाव भी हम लोग जान ले जाए, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, टमाटर के बात तो गई हुई हो तो
0: हाँ,
1: बताएं बाजार
0: तो
1: भाव
0: बाजार
1: कहाँ के
0: भाव
1: हो।
0: रावर्ट्सगंज सब्जी मंडी बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हैं, कुंतल में है। हम बता दें कि सफ़ेद आलू 900 से 1,000 रुपये कुंतल, लाल आलू 1,100 से 1,200 रुपये कुंतल, प्याज है 4,000 से 4,200 रुपया, ये सब कुंतल में है। लहसुन है 10,000 से 12,000 रुपया, परवल है 8,000 से 10,000 रुपया, और लौकी है 1,800 से 2,000 रुपया, करेला है 2,200 से 2,500 रुपया, नेनुआ है 1,800 से 2,000 रुपया, भिंडी है 2,000 से 2,200 रुपया कुंतल, और लंबा वाला बैगन है 2,500 से 2,600, और गोल बैगन है 3,500 से 4,000 रुपया कुंतल और टमाटर है 2500 से 2700, कद्दू है 1800 से 2000, कुद्रुन है 2000 से 2200, सूरन है 4000 से 4200 रुपया, और बोड़ा है 3000 से 3200 रुपया, फूल गोभी है 2500 से 3000 रुपया सैकड़ा, और पत्ता गोभी 2200 से 2500 रुपया सैकड़ा, और धनिया है 12000 से 14000 रुपया कुंतल, और अदरक है 6000 से 7000 रुपया ये सब कुंतल में, और हरी मिर्च है 4000 से 4500 रुपया, और नींबू है 500 से 600 रुपया सैकड़ा।
1: तो ये रावसगंज मंडी के बाजार भाव रहल। बाबूलाल मौर्य भैया के बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे महत्वपूर्ण जौन बाकी आदमी जौन साग सब्जी खेती करला वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही में नशा पत्ती की जो सेवन करला लोग ना वो जोन बाकी धन के हानि करबे करला, जन के भी हानि होला, घर भी बर्बाद होला,
0: शरीर के नुकसानी अलग से
1: बिल्कुल। तो ऐसे उसे बच बचा के रह के चाहे और साथ साथ साफ सफाई के साथ जोन बाकी रह के चाहे, ताकि जोन बाकी कोई आस पास बैठे है तो लगे की जोन बाकी कोई दिक्कत ना समझ में आए।
0: और
1: ऐसे लोग बैठ जाला अगल बगल गंदा दांत करके बढ़िया मुंह साफ न रही और आसपास आप बैठ नहीं पाई है।
0: कुछ लोग देखा भैया कहला में कोनो गुरेज नहीं बा कि कुछ लोग सुगंध देला कुछ लोग दुर्गंध देला। हाँ,
1: हाँ, हाँ,
0: तो आप लोग के ख्याल ये रखे के चाहिए कि आप जितना बढ़िया से रहिए, स्वच्छ साफ सुथरा धुलल कपड़ा फ्रेश कपड़ा चमकत पहनिए, मुंह बाल नाक सब बनल रही धुलल रही साफ रही।
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: कह जरा ना कि सब मैंने आकर्षित होना लोग
1: बिल्कुल
0: सफाई बिल्कुल, की तरफ सब कोई रुझान बढ़ेला और गंदगी से हर कोई बचल चाहेगा। तो भैया अपन आस पास के परिवेश स्वच्छ रखें, अपने आप के भी स्वच्छ रखिए तो स्वस्थ भी तो रहिए, स्वच्छता में ही स्वस्थ रहिए आप।
1: तो यही के मतलब अनुकरण करते हुए नशा पत्ती से बचें और जो बाकी साफ सफाई रहें, तो एक आशा करते हुए या खुद अपने अपनाते हुए आज के पंचायती है समेटे के वक्त आ गई है, तो क्या कहते हैं
0: चल जाए
1: सब पंचन के
0: राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार के लिखे इस गीत को। संगीत आर डी बर्मन का था और फिल्म का नाम था घर। आकाशवाणी उभरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अमीर खुसरो की इस रचना को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म का नाम था मैं तुलसी तेरे आंगन की। अब लीजिए सुनिए आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। संगीत आर डी बर्मन का है और फिल्म का नाम है जवानी दीवानी।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। शाम के 7:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं इमामती अहमद। सबसे पहले लीजिए सुनिए इनके स्वर में विदेशिया।

अभी आप सुन रहे थे इमामदी अहमद के स्वर में विरह गीत। अब लीजिए सुनिए इनके स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे इमाम दी अहमद के स्वर में देशभक्ति गीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में यानी शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर ब्रांड के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं से कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव से करें काम। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ समाज के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया एक नए भारत के दर्शन कर रही है।
3: 2014 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वेय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया था, एक नए भारत का दर्शन, एक भारत जो अपनी विरासत पर भी गर्व करता है और विकास के लिए जिसकी अपनी एक स्पीड है, एक ऐसा भारत जिस भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम फाइव से टॉप फाइव में आ गई है।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन में मेरठ को क्रांति की धरा बताया। उन्होंने कहा कि इस धरती ने कई ऐसे परिवर्तन दिए हैं जिन्होंने देश के साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया है। श्री नवीन ने बीते 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
4: आज हम कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में भरोसा का वातावरण है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज है, और आज हम कह सकते हैं कि विकास के

0: पथ पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और विकसित राज्य की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।
1: श्री नवीन ने युवाओं से संवाद के दौरान युवाओं को देश की मौजूदा ताकत बताया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सहारनपुर में सांसदों, विधायकों, जिला स्तर के पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की बेंच को बताया कि अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी 25 सितंबर या उससे पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी से 90 दिन की वैधानिक अवधि जल्द ही खत्म होने वाली है। उस अवधि से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने एसआईटी की ओर से पेश की गई विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी देखी। वहीं एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज आगरा में दो दिवसीय इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ किया। इस एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी प्रदेश में वेडिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति, सरकार के प्रयास, उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं और बेहतर कानून व्यवस्था के निवेशकों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है।
2: पर्यटन क्षेत्र में नई पॉलिसी एडॉप्ट करके इन सब लोगों को नई सहूलियत देने का, सब्सिडी देने का, तमाम इंसेंटिव देने का काम किया है, जिससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, कनेक्टिविटी का हो, या नई पॉलिसी तमाम सुविधा संसाधन और सब्सिडी देने का विषय हो, आज देश और दुनिया के तमाम निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्ति और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता व रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वहीं इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने अभियान के तहत शुरू हुई वाराणसी से वडनगर यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा के इटावा से गुजरने के दौरान रूट, स्वागत स्थलों, यातायात और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
4: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
3: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया।

0: कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
1: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ती है।
0: अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक, पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: वाराणसी में नमो घाट पर 25 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले 2026 का आयोजन होगा। इस दौरान वायुसेना के जाबाज आसमान में अपनी सटीकता, कौशल और समन्वय का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन में मध्य वायु कमान की 6 दशकों से अधिक की गौरवशाली विरासत और युद्ध अभियानों, आपदा, राहत,

0: आधिकारिक माध्यमों से जारी किए जाएंगे। राज्य के कुछ जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं से कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव से करें काम। सर्वोच्च न्यायालय में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चंदे में अनियमितता मामले में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा, 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: किधर है?
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC अपडेट।
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर KYC डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो KYC या आधार OTP बेस्ड eKYC से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: RBI कहता है,
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
7: एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: अभी आप सुन रहे थे लाभ जंजुआ की आवाज में राजशेखर के लिखे इस गीत को। फिल्म का नाम था तनु वेट्स मनु और संगीत था कृष्णा का। आकाशवाणी उपरस इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

लाभ झंझुआ और नेहा कक्कड़ की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्वीन के इस गीत को। संगीत अमित त्रिवेदी का था। आकाशवाणी ओबरस इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

कुमार के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ में। संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का था और फिल्म का नाम था रेडी। सबरस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए नेहा कक्कड़ और बादशाह की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गाना।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: नेहा कक्कड़ और बादशाह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन सौर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती

0: आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी ओबरा, जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा और नकाश अजीज की आवाज में फिल्म आर राजकुमार के इस गीत को, और इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए कैलाश खेर की आवाज में इस गीत को। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में इस गाने को, और आकाशवाणी उपदा से समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना।

फाल्गुनी पाठक के गाए इस गीत के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: पपॉन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दम मरो दम के इस गीत को। आकाशवाणी उबरस इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हमारी अधूरी कहानी, इस फिल्म में अब लीजिए सुनिए पपॉन की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आप सुन रहे थे पपॉन की आवाज में फिल्म हमारी अधूरी कहानी के इस गीत को। संगीत मिथुन का था और इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए मोहित चौहान की आवाज में इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे जसवंत सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज में इस गजल को। आकाशवाणी उपरस इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए चंदन दास की आवाज में अगली गजल।

0: चंदनदास के गाए इसी गजल के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: Meet India's scale and growing demand.
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
4: सहायक विद्युत इकाइयां एपीयू, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित एपीयू को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
6: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
7: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के

0: तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की तीन परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। यूपीआई भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
1: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
2: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
0: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
6: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
5: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans, and will create new employment opportunities.
6: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.
5: The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. on the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry today signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The contract was signed in presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh. Accurate Industrial Controls Private Limited is an Indian engineering and manufacturing firm based in Pune, Maharashtra. A report.
7: This procurement is a significant step towards indigenization of critical subsystems of armored platforms and demonstrates industry-led research and development make too. The induction of indigenously developed APUs will further strengthen the operational readiness, reliability and sustainability of the Indian Army's mechanized formations. The contract is aligned with government's vision of Viksit Bharat at 2047 and marks a notable milestone towards achieving Atmanirbharta in defense and building a resilient, self-reliant and globally competitive Indian defense industry. With Arzu, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines will apply to all upcoming 4- and 6-lane greenfield and brownfield high-speed access-controlled national highways. The guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highway corridors. This is Akashwani giving you the news.
8: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
5: President Draupadi Murmu has arrived on a three-day visit to Gujarat today. The president will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. Marking a historic shift, the Ministry of Information and Broadcasting takes the nation's highest film honours beyond the capital to celebrate India's cinematic diversity under the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. A report.
9: President Draupadi Murmu will preside over the ceremony at Ekta Nagar. Senior officials, including Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Chanchal Kumar, have reached Ekta Nagar to oversee and witness the historic event. Following the award ceremony, President Draupadi Murmu will travel to Vadodara for her final engagements on Wednesday. She'll attend the 75th annual convocation of the Maharaja Sayajirao University of Baroda as a chief guest to present gold medals to the meritorious students. Later in the afternoon, the President will launch Brahma Kumari's initiative Spiritual Awakening for World Renewal and inaugurate the Global Spiritual Palace at Padra alongside the virtual national launch of Youth for Viksit Bharat. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
5: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by mantra of Janseva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues, guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the digital public infrastructure.
0: Digital public infrastructure is reshaping how nations govern, transact and deliver services. In this transformation, India has moved from being a large user of digital systems to a builder of population-scale digital architecture. India has built three layers of shared digital infrastructure and left each of them open for others to build on. First is Aadhaar, which provides a verifiable identity. UPI moves money between any two bank accounts instantly at no charge to the person paying. The account aggregator framework lets a citizen share their own financial record with a lender or insurer with consent. Addressing the global FinTech Fest 2026 this month in Mumbai, Prime Minister Narendra Modi highlighted UPI's remarkable 10-year journey and its growing global reach.
1: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को यह असंभव लगता था लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज।

0: majority in parliament. And at Asian Games, India wins 3 medals in shooting in Japan. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada.
2: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था सीआईडी।

अब लीजिए सुनिए कमाल अमरोही के लिखे इस गीत को फिल्म पाकीज़ा से, आवाज लता मंगेशकर की।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत नौशाद का था और फिल्म का नाम था मुगले आजम। इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अमित त्रिवेदी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंधाधुंध के इस गीत को। संगीत अमित त्रिवेदी का था। आकाशवाणी उग्र से

समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरे की आवाज में फिल्म लैला मजनू के इस गीत को। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये था फिल्म केदारनाथ का गाना। आकाशवाणी उबरसे समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म रंगून के इस गीत को।

गुलजार के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म रंगून से। संगीत विशाल भारद्वाज का था।

अब लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान, रेखा भारद्वाज और कुणाल गाजावाला की आवाज में फिल्म कमीने के इस गीत को। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है विशाल शेखर का। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

0: love.
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: अभी आप सुन रहे थे कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म कमीने के इस गीत को। गीतकार थे गुलजार, संगीत था विशाल भारद्वाज का, और इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में, जो है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद और आभार कि आपने हमें अपने बहुमूल्य समय से निकाल कर थोड़ा सा ईमेल और ढेर सारे मैसेजेस भेजे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए और अपने पसंद के गाने सुनने के लिए हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com। फरमाइशी गीतों के लिए ईमेल में अपना नाम और पता अवश्य साझा करें। म्यूजिक गैलरी आप सुनते हैं प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे। तो आइए सबसे पहले अपने कार्यक्रम में जो ईमेल हमने शामिल किया है वो भेजा है नंदन कुमार, जिला मोतिहारी, बिहार से। और इन्होंने अपने मैसेज में हमें सब प्रेम नमस्कार भी लिखा है। नमस्कार नंदन कुमार जी, और इनकी फरमाइश है फिल्म कुछ कुछ होता है के इस गीत के लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। और साथ ही जिला बेगूसराय बिहार से संदीप कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह की भी यही फरमाइश है। तो श्रोताओं, लीजिए आपकी फरमाइश पर सुनिए फिल्म कुछ कुछ होता है के इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

आकाशवाणी उम्र से समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। हमारे पास जो अगला ईमेल आया है वो आया है आर्यन राज का, मुजफ्फरपुर बिहार से, और इनके साथ श्रोताओं के नाम है आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। इनकी फरमाइश है फिल्म अनुपमा के इस गीत के लिए धीरे धीरे मचल लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को इन्होंने फरमाइश की है। तो लीजिए आर्यन राज जी सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म अनुपमा के इस गीत को।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में। और इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल आया है वो आया है नारायण खंडे जी का। इन्होंने अपने ईमेल में लिखा है नमस्कार। नमस्कार नारायण खंडे जी, और इनके साथ श्रोताओं के नाम है रजनी खंडे, तुषार खंडे, समीर खंडे, और इन्होंने धन्यवाद भी लिखा है। साथ ही इनकी फरमाइश है फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत मिलने की तुम कोशिश करना। और इन्होंने हमें ईमेल भेजा है मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से। तो नारायण खंडे जी, लीजिए अपनी फरमाइश पर सुनिए इस गीत को, फिल्म दिल का क्या कसूर।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से 102.7 FM पर, और मैं हूं प्रीति सिन्हा। इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल हमने शामिल किया है वो भेजा है गोविंद वैष्णव जी ने। इनके साथ दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, और इन्होंने हमें ईमेल भेजा है ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। और इन्होंने एक नहीं कई ईमेल हमें भेजे हैं, और इनकी फरमाइश है फिल्म साजन के इस गीत तुमसे मिलने की तमन्ना है। तो गोविंद वैष्णव जी, लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत।

आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। और इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल हमने शामिल किया है वो भेजा है विजय शेगोकार और ऋषिकेश शेगोकार जी ने पलसी से। इनकी फरमाइश है फिल्म कश्मीर की कली के इस गीत के लिए इशारों इशारों में। तो लीजिए सुनिए विजय शेगोकार और ऋषिकेश शेगोकार जी आपकी फरमाइश पर आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से ये कार्यक्रम में अगला गाना।

म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में जो अगला ईमेल हमने शामिल किया है वो भेजा है आर कुमार वडिंग खेड़ा मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा ने पंजाब से, और इन्होंने अपने ईमेल में लिखा है नमस्कार। नमस्कार आर कुमार जी, और इनकी फरमाइश है फिल्म तेरे घर के सामने के इस गीत के लिए तू कहाँ इस नशीली रात में, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश पर इस गीत को।

आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। और इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल आया है वो भेजा है अजीत कसाना ने, साथ में माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। इन्होंने हमें ईमेल भेजा है लदावली जिला मुरादाबाद से, और अपने ईमेल में इन्होंने लिखा है, आरजे प्रीति सिस्टर जी, लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम, राधे राधे। नमस्कार अजीत कसाना जी, और इन्होंने लिखा है कि किसी भी खूबसूरत सॉन्ग में हमें भी शामिल कर लेना जी। ठीक है अजीत कसाना जी, आपकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए इस गीत को।

आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। श्रोताओं आपके लगातार ईमेल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल हमने शामिल किया है वो भेजा है अनिल गांवकर, अभिजीत गांवकर राही, श्रीमती सरिता, प्रणीता, सिद्धांत गांवकर, अर्जुन और टुकटुक। इन्होंने किसी भी गीत में इनका नाम शामिल करने को लिखा है और इन्होंने ईमेल भेजा है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से और इन्होंने अपने ईमेल में बहुत धन्यवाद भी लिखा है। साथ ही जो ईमेल हमारे पास आया है योगेश सारवा, आशा सारवा, बन बघेरा, जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से, इनकी भी फरमाइश है कि इनको किसी भी गीत में शामिल करें। और इसके साथ ही रवि कुमार, राहुल रवि, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, रवि रंजीत कौर, जयप्रकाश, गुरशब्द सिंह, राहुल, प्रियंका मन्नत और गुरकीरत, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है कि इन्हें किसी भी गीत में शामिल किया जाए। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए आपके लिए फिल्म कलाकार के इस बेहतरीन गाने को सुनिए किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से 102.7 FM पर। अगला ईमेल जो हमने शामिल किया है वो भेजा है धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा, पूजा परिहार, और इन्होंने हमें ईमेल भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से। और इन्होंने अपने ईमेल में लिखा है, आपको हार्दिक नमस्कार, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं। तो म्यूजिक गैलरी में ये ईमेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र छिम्पा जी। और आपने लिखा है कि कोई भी गीत फरमाइश में शामिल करें। साथ ही जो ईमेल आया है मुकेश कश्यप जी का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, इन्होंने लिखा है नमस्कार जी, आपको नमस्कार। और इनकी फरमाइश है कि किसी भी गीत में इन्हें शामिल करें, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और इसके साथ मोहम्मद फरमान, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार जी, और साथ ही नरगिस खातून जी, इन्होंने हमें ईमेल भेजा है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, इन्होंने लिखा है थैंक्स जी आपका, और हमारी मेल में भी शामिल कीजिए किसी भी गीत में, ठीक है। और साथ में आया है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, इन्होंने लिखा है रेस्पेक्टेड होस्ट जी, प्यार भरा आदाब, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, किसी भी सदाबहार गीत में शामिल करें जी, धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप सभी के लिए फिल्म दिल से के इस गीत को लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में।

म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। और इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल हमने शामिल किया है वो भेजा है वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, मनोज भ्यान, गांव जेवरा हिसार से। और साथ ही जो ईमेल आया है चंदू कुलकर्णी दुगोई सेलू से, इनके साथ ईमेल भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं हेमलता और चंदू कुलकर्णी जी, सी आर कुलकर्णी जी। तो इनकी फरमाइश पर अब लीजिए सुनिए फिल्म लावारिस के इस गीत को किशोर कुमार की आवाज़ में अपनी तो जैसे तैसे। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं अपने विचार हमसे साझा करने के लिए और अपने पसंद के गाने सुनने के लिए हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है akashvaniopra@gmail.com। फरमाइशी गीतों के लिए ईमेल में अपना नाम और पता अवश्य साझा करें। म्यूजिक गैलरी आप सुनते हैं प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। तो श्रोताओं इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी यही समाप्त होता है। अब दीजिए अनुमति प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी समाप्त करने की। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में।

0: अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्व

0: आकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एक सौ 2.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हो रही हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।